मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ हैं आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 और 15 सेकेंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशकांत से।

कार्यक्रम वंदना में अब आपको सुनवाते हैं रविंद्र साठे के स्वर में हनुमान अष्टक।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम वंदना में अभी आपने सुना चित्रा सिंह के स्वर में इस भक्ति गीत को। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रीति सागर और साथियों के स्वरों में इस भक्ति रचना को।

0: अनूप जलोटा के स्वर में प्रस्तुत इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन में डॉक्टर विजय शर्मा के विचार। वाचक स्वर है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: मानव जाति के पास असीमित ज्ञान का भंडार है। ये ज्ञान पुस्तकों से होता हुआ अब कंप्यूटर तथा इंटरनेट तक पहुंच चुका है। इस युग में ये चर्चा बार बार होती है कि तकनीक के इस युग में पुस्तकों की अब क्या आवश्यकता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पुस्तकों के महत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा हो। इससे पहले भी जब छापाखाना, टीवी, रेडियो आदि का आगमन हुआ था, तब भी इसी तरह के प्रश्न पुस्तकों के महत्व तथा अस्तित्व पर लगाए गए थे। आज जब इंटरनेट का आगमन हो गया है तो फिर से ये प्रश्न सिर उठा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रारंभिक काल से लेकर आज तक पुस्तकों ने संस्कृति के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तकें संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ विचारों को साहित्य, विज्ञान, इतिहास तथा व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में हम तक पहुँचती हैं। आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी समस्या है तनाव। तनाव मन की वो स्थिति होती है जब व्यक्ति स्वयं से बिल्कुल अकेला होता है। केवल घबराहट और बेचैनी ही उसके साथी होते हैं। ऐसे समय में पुस्तकें हमारी मित्र हो सकती हैं। पुस्तकों से हम वार्तालाप कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, अपने मार्ग का निर्धारण कर सकते हैं तथा अपने मन तथा चरित्र का परिष्कार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पुस्तकों ने व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलकर उन्हें एक सफल और सुखी इंसान बना दिया। परंतु आज धीरे धीरे लोगों में पुस्तकों को पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है। जीवन की भाग दौड़, आपाधापी में अब पुस्तकें पढ़ने का अवकाश ही शेष नहीं बचा है। कुछ लोगों को लगता है कि इंटरनेट के इस युग में जब लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जैसे साधन हमारे पास हैं तो पुस्तकें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये ठीक है कि इंटरनेट ने हमें पूरे विश्व के साथ जोड़ दिया है, परंतु ये भी सत्य है कि हमें उसने मशीनी और रोबोट जैसा बना दिया है। हमारी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति को वो पंगु बना रहा है। सामान्य से पहाड़े भी आज बच्चों को याद नहीं है, और चीज़ों की तो बात ही क्या है। इंटरनेट से आज की पीढ़ी इतनी अधिक आश्रित हो चुकी है कि धीरे धीरे हमारा हृदय पक्ष समाप्त हो रहा है। इस समस्या से पुस्तकें हमें मुक्ति दिला सकती हैं। पुस्तकें हमारे हृदय पक्ष का विस्तार और परिष्कार करती हैं। पुस्तक अध्ययन की प्रवृत्ति कम हो जाने का प्रभाव है कि आज समाज में निरंतर स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ रही है और हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। संबंध टूटने के कगार पर आ गए हैं, जबकि समाज, परिवार और देश संबंधों अर्थात हृदय पक्ष से ही चलते हैं। पुस्तकें हमारे वैयक्तिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, साथ ही सामाजिक जीवन के विकास की भी प्रेरक होती हैं। इस प्रवृत्ति के कम हो जाने की वजह से ही हमें आज व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ई बुक आ गई है तो अब कौन छपी हुई पुस्तकें और अखबार पढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि इंटरनेट पर बैठकर कितने लोग हैं जो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। और वैसे भी पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ने से जो एकाग्रता बनती है वो इंटरनेट पर कहाँ। पुस्तकों का अध्ययन व्यक्ति को चिंतनशील बनाता है और भाषा शैली में भी प्रखरता लाता है। आज इंटरनेट और मोबाइल पर भाषा की इस समस्या को देखा जा सकता है कि किस प्रकार लोग कम से कम शब्दों में संक्षिप्तीकरण करके बात करते हैं। तकनीकी हमें सूचनाएं तो दे सकती है, परंतु पुस्तकें ही हमें मनुष्य बनाती हैं। शायद यही संदेश कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में हमें दिया है। कितने निराश व्यक्तियों को पुस्तकों ने प्रेरणाएं देकर सत्मार्ग पर लगा दिया है। इसलिए पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र हैं। चाहे मानव कितना भी तकनीकी विकास कर ले, लेकिन मनुष्य बनने के लिए उसे पुस्तकों का ही सहारा लेना पड़ेगा।
0: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे पुस्तकों का महत्व विषय पर डॉक्टर विजय शर्मा के विचार। वाचक स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा। बरसात के मौसम

0: यह भी ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां नीचे गिर जाती हों, जैसे आंवला, सीताफल, करौंदा, इमली, बेर। फल वृक्षों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में बान की पौधे, यूकेलिप्टस, सुबबूल, बांस, महुआ का भी रोपण कर सकते हैं। पौध रोपण के लिए उचित दूरी पर गड्ढे खोदने के साथ साथ सीढ़ी नुमा नालियाँ भी बना देनी चाहिए, जिससे पौधों के पास अधिक समय तक पानी थलई में एकत्रित न हो। पानी के बहाव का वेग कम होगा, मिट्टी क्षरण भी रुकेगा। यदि मिट्टी की गहराई पर्याप्त है, पानी अधिक समय तक रुकता हो, वहाँ पर आम, कटहल, अमरूद का रोपण करें और बाद में उन्हें कलमी पौधों में परिवर्तित करें। पौध रोपण सही समय पर करें, जिससे बारिश का अधिक से अधिक लाभ पौधों को मिल सके। पौधों की बढ़वार के अनुसार पौधों की दूरी निर्धारित की जाती है, जैसे आम, कटहल, महुआ, आंवला। ये पौधे बड़े आकार के होते हैं और इनकी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इसी प्रकार कम आकार के बनने वाले पौधे नींबू वर्गीय, अमरूद, सीताफल, इनकी दूरी 6 मीटर रखी जाती है। यदि निर्धारित दूरी से पौध कम दूरी पर रोपण करेंगे तो डालियां आपस में मिल जाएंगी और इन्हें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलेगा। फलस्वरूप बगीचे के किनारे के पौधों को छोड़कर शेष पौधों में फलन न के बराबर होगी। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न मिल पाने के कारण फल अधिक झड़ेंगे, कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक होगा। इसलिए पौध रोपण निर्धारित दूरी पर ही करनी चाहिए। पौध रोपण के बाद गड्ढों की भराई के लिए अच्छी पकी गोबर की खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में, साथ ही कोई भी कीटनाशक चूर्ण, फेनवाल, फलीडाल या नीमयुक्त दवा मिलाकर अवश्य गड्ढों की भराई करें, जिससे पौधों में दीमक लगने की संभावना न रहे। पौध रोपण के लिए क्यारियों में एक या दो बार बदला हुआ पौधा ही होना चाहिए। ऐसे पौधों में फाइब्रस रूट्स, जिन्हें झकड़ा जड़ कहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है और ये जल्दी ही भूमि से पोषक तत्व अवशोषित करने लगते हैं, जिससे जड़ों का जमाव शीघ्र होता है। जलग्रहण क्षेत्रों में बीजू पौधा ही लगाएं, बाद में उन्नत किस्म के पौधों में परिवर्तित करें। बीजू पौधों में टैप रूट पाई जाती हैं, जो काफ़ी गहराई तक जाकर भूमि में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जिससे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। वर्षा का मौसम समाप्त होने के बाद पौधों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पौधों के बीच में उगे खरपतवारों को निकालते रहें, जिससे पौधों में कीट और बीमारियों से बचत होगी। साथ ही खरपतवार भूमि से पोषक तत्व भी अवशोषित करते हैं, जिससे मुख्य पौधे कमजोर हो जाते हैं। पौध रोपण के 4-5 वर्ष तक पौधों के बीच में अधिकांश भूमि खाली रहती है। ऐसी भूमि में अंतर्वर्ती फसलें सब्जी के रूप में उगाकर आय का स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा, बरसात के मौसम में पौध रोपण। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर,

0: वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: उड़ाती हुई लड़की।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का।
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
1: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
0: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
1: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
0: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
1: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
0: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई जरा देख।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित संस्कृत और हिंदी में समाचार।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं संप्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मैसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि सम्बोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगम इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपति ही सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अभी गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा 18,100+ आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः संयुक्तारक्षकायुक्तः अपरायुक्तः उप आरक्षकायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शनसमये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्य अपि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः 60 आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः 70 प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये 5 भारतीय नागरिकैः सह 17 चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नवदिल्ल्यां पनामा देशस्य विदेश मंत्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉक्टर जयशंकर लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामा देशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्त्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मंचेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
3: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनज़र आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

प्रातः 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे भगवान सिंह कुशवाहा। आप सुनेंगे इनके गाए कुछ लोकगीत। प्रसारण समय रहेगा 8:30। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी साधना गोरे। आप सुनेंगे राग सलाक बरालिए तोड़ी में शास्त्रीय गायन। प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:30। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। दिन के 11 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। महिला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अपराह्न 1 बजे आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति। साथ ही सुनिएगा दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 2:30 पर चित्रपट संगीत।

शाम 5:02 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 5:33 पर और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 6:00।

0: ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होता है। शाम 7:20 पर चर्चा होगी अटल पेंशन योजना और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। साथ ही सुनिएगा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह। रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे संसद समीक्षा और 8:15 पर सुर्खियों में फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता शाम 8:35 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिएगा संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाइयों का प्रसारण। कार्यक्रम राग रजनी सुनिएगा रात 10:30 पर। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंची, यहां भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को करेंगी संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता सहित 14 अधिनियम किए गए पेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच चुकी हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया

0: कि राष्ट्रपति गोडाना सेल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की, विधानसभा अध्यक्ष अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों पक्ष कृषि, फार्मास्यूटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ITES जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सेंट स्पास चर्च का दौरा भी करेंगी और मैसेडोनिया के प्रख्यात क्रांतिकारी गोसे दिलचेव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। कल से प्रारंभ हुए राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता UGC सहित 14 विधेयक पेश किए। UCC पर चर्चा आज कराई जाएगी। समान नागरिक संहिता के साथ मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, मध्यप्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पेश किए गए हैं। मंत्री गौतम टिटवाल ने मध्यप्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026, मध्यप्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। गुना जिले में अगस्त माह के पहले सप्ताह में निशुल्क थैलेसीमिया जांच और बोन मैरो ट्रांसप्लांट परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। कल पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सद्भाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने बताया है कि इस साल जून तक 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता UPI से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में UPI के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने बताया कि UPI लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम आधारित लेन देन सीमा, मोबाइल नंबर में अनाधिकृत बदलाव और SMS आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर रोक तथा UPI एप्स के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस साल के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव कृष्ण बेड़ी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में और लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिन की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच के बाद प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए हैं। ओमान के मस्कट में कल एफआईएच यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता के पहले दिन कजाकिस्तान के खिलाफ 8-3 से जीत हासिल की, जबकि पुरुष टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से हराया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर प्रारंभ हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय और वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशव्यापी महर्षि संदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन भी किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव आज से 2 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रावण माह की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम जिले में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि रोकने के उद्देश्य से दामिनी ऐप को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए नींव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 7:20 और 40 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

श्रोता साथियों, जब मन कुछ ऐसा सुनने को करता है जो दिल को छुए, सुकून दे, तो ऐसे में याद आते हैं आनंद बख्शी के गीत। जी हाँ, आज हम सभी याद कर रहे हैं उनकी जन्म जयंती पर उन्हीं के लिखे कुछ सुने अनसुने गीत। अंग्रेजों के जमाने में फौज की नौकरी करने वाले आनंद बख्शी तब की बम्बई आए तो थे गायक बने, लेकिन उनके गाने हिंदुस्तानियों के हर हौसले की मिसाल बन चुके थे। गीतकार बहुत हुए, लेकिन आनंद बख्शी के गीतों की खासियत उनकी सादगी रही। उनके बोल इतने सरल होते हैं कि आम आदमी की जबान उन शब्दों के साथ पल भर में ही सहज महसूस करती है। हर गाने में एक फलसफा और फलसफे का अपना अलग अंदाज, यही वजह रही है कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। यह उनके लिए लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से उन्हें सबसे अधिक बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और 4 बार के वो विजेता भी रहे। अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म यादें से। धुन तैयार की थी अनु मलिक ने और सुरों से सजाया था सुनिधि चौहान, महालक्ष्मी अय्यर और सुभाष घई ने। आइए, आपके लिए प्रस्तुत है उन्हीं के द्वारा रचित एक और गीत फिल्म नमक हराम से। संगीत बद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने और इसे सुर दे रहे हैं किशोर कुमार।

बचपन से ही कविता और गानों के शौकीन बख्शी साहब ने 12 अप्रैल 1950 को तब के बॉम्बे और आज के मुंबई में कदम रखा। उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला फिल्म भला आदमी के गीत लिखने के लिए। हालांकि उन्हें वास्तविक पहचान ब्रजमोहन के द्वारा निर्देशित फिल्म मेहंदी लगे मेरे हाथ से मिली। उन्हें बॉबी, अमर प्रेम, आराधना, लम्हे और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए अमर गीत रचने के लिए याद किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं उनके द्वारा लोकप्रिय फिल्म आराधना का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में संगीत से सवारा है सचिन देव बर्मन ने।

श्रोता साथियों, आनंद बख्शी आज ही के दिन 1930 में इस संसार के साथ अपनी आंखों को खोला। हिंदी सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय गीतकार के साथ साथ अपने 4 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों के लिए 3500 से अधिक सदाबहार गीत लिखे। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बालिका वधु का ये गीत अमित कुमार की आवाज में। संगीत निर्देशन है राहुल देव बर्मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में श्रोता आज सुन रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी के जन्म जयंती पर उनके लिखे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आनंद बख्शी हमेशा गायक बनना चाहते थे। संघर्ष के दिनों में एक टिकट ट्रेन के टिकट को वो 4 साल तक उन्होंने संघर्ष के दिनों में एक टिकट कलेक्टर ने उन्हें 4 साल तक फ्री में ठहराया और हर रोज 2 रुपये पॉकेट मनी दी। उनकी सादगी का अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक बार ट्रेन में उन्होंने एक भीख मांगने वाले को अपना ही अनसुना गीत गाते सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म मनोरंजन का ये गीत, संगीत एक बार फिर से राहुल देव बर्मन का।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: गीतकार आनंद बख्शी अपनी निजी जिंदगी में पूरी तरह से शाकाहारी और शराब से दूर रहने वाले इंसान थे। इसके बावजूद उन्होंने जय शिव शंकर और दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा जैसे शराब और महफिल से जुड़े बेहतरीन गीत लिखे। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को लेकर कई ऐसे गीत लिखे जो यादगार हुए। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉबी का ये गीत, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
7: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था, मुझे मलाल है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे गीत हैं जिन्हें मैं लिखकर किसी को दे देता। अफसोस है कि वो गाने मेरे भीतर से आए और मेरे साथ ही चले जाएंगे। और इसके साथ ही उनका गीतों का ये सफ़र यहीं समाप्त हो गया। 30 मार्च 2002 को उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ली, लेकिन उनके लिखे गए गीत आज भी हमारे होठों पर मुस्कान ले आते हैं, हमें याद दिलाते हैं अपनों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़।

0: सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है।
1: अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर

0: मीडियम वेव डीटीएच के ओरिजिनल साथी न्यूज ऑन
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 8:30 और 20 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार भगवान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देवी गीत।

भगवान सिंह कुशवाहा के साथ सारंगी संगत पर हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खां, हारमोनियम पर अक्षत मिश्रा और ढोलक पर संगत दे रहे हैं अब्दुल वसीम खान।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार भगवान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में कजरी।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार भगवान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत। सारंगी संगत थी उस्ताद अब्दुल मजीद खां की, ढोलक पर थे अब्दुल वसीम खां और हारमोनियम पर अक्षत मिश्रा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: इस घंटे की खास खबरों का तो प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच चुकी हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज दूसरे दिन समान नागरिक संहिता UGC पर चर्चा संभावित है। राज्य सरकार ने सदन में कल UGC सहित 14 संशोधन अधिनियम पेश किए थे। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। उन्होंने ये बात पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कही। इस साल जून माह तक 55,49,00,000 से अधिक उपयोगकर्ता UPI से जुड़ चुके हैं। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव आज से 2 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भिंड, मुरैना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 9:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का नमस्कार। साथियों, एक दिन नया सवेरा और हम आपके साथ मुखातिब हैं आज के कार्यक्रम का ये ताज़ा तरीन अंक लेकर। वैसे तो आप सभी की गुड मॉर्निंग हो गई है, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी उन्हीं से हैं, या कहें अभी भी उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। बहरहाल, हम तो चाहेंगे आप जाग जाएं और इसी संदेश को आज हम अपने युवाओं के लिए लेकर आए हैं कि अब समय है आपके जागरूक होने का, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। श्रोता मित्रों, युवा किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है। देश की विशाल युवा जनसंख्या अपनी ऊर्जा, नवीन विचारों और तकनीकी कौशल से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आज की युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आविष्कार कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। स्टार्टअप्स के माध्यम से वे रोजगार सृजन में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे युवा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जातिवाद, अशिक्षा और लैंगिक भेदभाव को मिटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। श्रोता मित्रों, युवाओं की भागीदारी सुशासन और पारदर्शिता लाती है। वे अपने मताधिकार और जागरूकता अभियानों से लोकतंत्र को सशक्त करते हैं। आज का युवा जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक है और वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। उनकी रचनात्मकता और देश प्रेम को सही दिशा देकर भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। युवाओं का सशक्तिकरण ही

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला व्यापार उद्योग केंद्र की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन 28 जुलाई को किया जाएगा। इसमें आने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया पूरी करेंगे, साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण प्रकरण तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार युवा संगम में 32 कंपनियां आ रही हैं, इसमें कुछ ग्वालियर और कुछ दूसरे शहरों की हैं। युवा संगम में 18 से 35 वर्ष आयु के युवा प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता तय की गई है। श्रोता साथियों, हम सभी के लिए, पशु पौधे सभी जीवित प्राणियों के लिए जल बहुत ज़रूरी है, फिर भी हम में से कई लोग बिना सोचे समझे नल खोल देते हैं, यह भूल कर कि ताज़े पानी का भंडार सीमित है। यही कारण है कि जल बचाओ जीवन बचाओ का संदेश आज पहले से अधिक ज़रूरी हो गया है। बच्चों को बचपन से ही जल को बचाने के बारे में सिखाने से वो अधिक जिम्मेदार बनते हैं, वो पृथ्वी को लेकर अधिक जागरूक रहते हैं, प्रकृति को लेकर सजग रहते हैं और इसे संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जल को बचाने को लेकर इसे समझने के लिए हमें इस बात को लेकर जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए पीने का पानी बहुत कम रह गया है। पानी पृथ्वी के सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। सभी जीवित प्राणी जीवन के लिए जल पर निर्भर हैं, लेकिन प्रदूषण और अपव्यय के कारण ताजे पानी की कमी होती जा रही है। जीवन और प्रकृति की रक्षा के लिए जल को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। हम नल बंद करके, रिसाव ठीक करके और जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करके इसे बचा सकते हैं। पौधों के लिए जल का पुनः उपयोग करके उसके अपव्यय को रोका जा सकता है। किसान फसल उगाने के लिए पानी पर निर्भर है और जानवर जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर हैं। पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन लगभग असंभव है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कैच द रेन का आयोजन किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस मिशन को चलाया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को व्यर्थ बहने से बचाना और उसे वहीं सहेजना है जहां वो गिरता है। इस अभियान की मुख्य टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स When it falls, यानी बारिश का पानी जहां और जब गिरे उसे वहीं सहेज लें। इस योजना का उद्देश्य भूजल के स्तर को बढ़ाना, वर्षा के जल का संचयन करना, पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ियों और तालाब को स्थायी बनाना है। इसके तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना, रिचार्ज पिट बनवाने के साथ चेकडेम का निर्माण करना और जल स्रोतों से मिट्टी निकालना शामिल है। श्रोता मित्रों, यह एक सरकारी योजना न होकर एक जन आंदोलन है, जिसमें लोगों, पंचायतों और स्थानीय निकायों और महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ा जा रहा है और ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अनूठा अभियान हो चुका है। हम यूं तो देखते हैं कि प्रकृति ने अपनी चुनहर हरी ओढ़ रखी है, लेकिन ये यूं ही नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा के जल ने इसे भिगोया है, तभी तो हमें नज़ारे नए दिख रहे हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता मित्रों आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज की युवा पीढ़ी एक बहुत बड़ी समस्या के साथ भी अभी भी जूझ रही है और वो है नशे की लत। हमारे देश में युवाओं के बीच तेजी से फैल रही ये समस्या न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उस पर असर डालती है, इसके साथ ही परिवार, समाज और देश की प्रगति पर भी गहरा असर डालती है। हमारा देश एक युवा राष्ट्र है, जहां 40% आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन इस युवा ऊर्जा को नशे की लत कमजोर कर रही है। नशे की लत, जिसे अंग्रेजी में सब्सटेंस एब्यूज कहा जाता है, इसमें अल्कोहल, गांजा, अफीम, कोकीन, एलएसडी और नशीले अन्य पदार्थ शामिल हैं। युवावस्था में यह समस्या इसलिए अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलने लगती है। भारत में यह समस्या अब महामारी का रूप ले रही है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक दबाव मुख्य भूमिका निभाते हैं। नशे की लत एक जटिल समस्या है श्रोता साथियों, जिसके कई कारण हैं। ये कारण सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण से जुड़े होते हैं। एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि युवा पीढ़ी इन कारकों में सबसे अधिक प्रभावित होती है, वो है अपने साथियों के द्वारा बनाया गया दबाव। युवा अक्सर दोस्तों के दबाव में नशा शुरू करते हैं। यदि कोई दोस्त नशा करता है तो दूसरा भी उसे आजमाने की कोशिश करता है ताकि वो समूह में फिट हो सके। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 67% युवा 19 वर्ष से कम आयु में नशा शुरू करने लगते हैं अपने साथियों के कारण। इसके अलावा सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी प्रभाव की वजह से भी हमारा युवा वर्ग नशे को अधिक परिभाषित करने लगा है। युवा अधिक आकर्षित होते हैं इस क्षेत्र में। सेलिब्रिटी या भाई बहन का नशा करना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अलावा यदि परिवार में कोई सदस्य नशा करता है तो युवा उसे कॉपी कर सकते हैं। असामाजिक व्यवहार या अभिभावकों का नशा एक रोल मॉडल बन जाता है। गरीब युवा नशे को अपनी कठिनाइयों से बचने का साधन मानते हैं। सामाजिक तनाव, आर्थिक गतिशीलता की कमी और गरीबी मुख्य कारण है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है इसको अपनाने की। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस समस्या से निजात पाएं अपने युवा वर्ग के लिए। युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए परिवार, स्कूल, समाज और निजी संस्थाओं का सहयोग बहुत ज़रूरी है। एकजुट होकर ही समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। युवाओं में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर चुनौती है, लेकिन यदि हम जागरूकता, शिक्षा और उपचार पर ध्यान दें तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कहते भी हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप या आपका कोई भी जानकार इस समस्या से जूझ रहा है तो उसे तुरंत काउंसलिंग और सहायता दें। नशा मुक्त भारत की दिशा में हर व्यक्ति का योगदान बहुत ही जरूरी है।

और श्रोता मित्रों, अब समय हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। अरुणा को दें कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं साधना गोरे। आप सुनेंगे राग सलाग बराड़ी तोड़ी में। शास्त्रीय गायन तबला संगत है नारायण प्रसाद शर्मा की।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार साधना गोरे का राग सलाग बरारी तोड़ी में शास्त्रीय गायन, तबला संगत थी नारायण प्रसाद शर्मा की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में भोपाल से प्रादेशिक समाज जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून एक बार फिर खंडवा जिले में सक्रिय हो गया है। कल सोमवार शाम से हुई अच्छी बारिश से किसानों को राहत मिली है। जिले में अब तक 285.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। सभी प्रमुख जलाशयों के गेट फिलहाल बंद हैं और किसी भी परियोजना से बाढ़ नियंत्रण के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जिले के ओमकारेश्वर में गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने सिकल सेल उन्मूलन को देश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिशन मोड में कार्य कर रही हैं। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भविष्य देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश द्वारा सिकल सेल स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन केवल स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को सुरक्षित बनाने का जन आंदोलन है। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खंडवा जिले के फिफरी सरकार में नवनिर्मित हाई स्कूल भवन और छैगांव माखन में जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल पर की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 12 उपार्जन केंद्रों पर 7 जुलाई से 8 अगस्त तक मूंग की खरीदी की जाएगी। किसानों से निर्धारित केंद्रों पर अपनी उपज विक्रय करने की अपील की गई है। जिले में 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। रैलियों, मानव श्रृंखला, शपथ प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त समाज का संदेश दिया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के शिविरों में 437 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग विषय पर कार्यशाला आयोजित कर ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। विशेष लोक अदालत में 55 प्रकरणों के समझौते से निराकरण हुआ और 83 लाख रुपए से अधिक की राशि का सेटलमेंट कराया गया। वे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिरों के दान पत्रों से कुल 27,58,000 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए किया जाएगा। खंडवा के शतरंज खिलाड़ी आशुतोष सिंह का कजाकिस्तान में होने वाले शतरंज ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। वही ट्राइफेड ने जिले के 90 जनजातीय शिल्पकारों का पंजीयन कर उन्हें विपणन और रोजगार से जोड़ने की पहल की है। उधर परिवहन विभाग के विशेष अभियान में 19 स्कूल बसों पर कार्रवाई करते हुए 1,05,000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। स्कूल संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पिछले दिनों खंडवा में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत 8,43,00,000 रुपए की लागत से 11 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्पेशल मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल 22 जुलाई को खंडवा पहुंचेंगी। वे कलेक्टर से भेंट करने के साथ स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, महिला थाना और सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करेंगी। खंडवा के प्रसिद्ध धूनी वाले दादाजी आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम 29 जुलाई को होगा। पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने प्रकाश, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए खंडवा में 30 जुलाई को जिला स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक और जैविक खेती, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खंडवा जिले में 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा का गौरव दिवस आयोजित किया जाएगा। गौरव दिवस के दौरान खंडवा रन, चित्रकला प्रतियोगिता, स्कूली विद्यार्थियों के

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैंड प्रस्तुति सहित विभिन्न तरह के आयोजन होंगे। वहीं 4 अगस्त महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर उनके स्मारक पर पुष्पांजलि और गीतांजलि का कार्यक्रम तथा शाम को किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लौंगरे कथा और वाचक थी दीपा सिंह। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आगाज।
2: मीडियम वेव साथी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। सुबह के 10:05 और 15 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत। अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, धुन तैयार की है जतिन ललित ने, पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता शर्मा, किशनगंज बिहार से इस गीत को सुनना चाहे रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा, सुमन और माधुरी किरण ने। आप सब सुनिए फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। फिल्म जोश से गीतकार है समीर और धुन तैयार की है अनु मलिक ने। इस गीत को आवाज दी है अभिजीत ने। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा इसी गीत को सुनना चाह है। आलोड रतलाम से जगदीश धाकर नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकर युवराज सिंह धाकर और शिवांगी धाकर। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी। जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली अनिल प्राजक्ता घोड़के वैष्णवी घोड़के गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। गांव खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बेजारनिया देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा आरजू और नव्या बेजारनिया। आप सब सुनिए फिल्म जोश का गीत अभिजीत की आवाज़ में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में अभी आपने सुना फिल्म दिल है तुम्हारा का शीर्षक गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने, धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे और देवेंद्र भटकर जी। मधुबनी बिहार से इसी गीत को सुनना चाहा था साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली ने। हरगोबिंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश शिखा और प्रतीक्षा संधू, साथ में मैक्स। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर, फिल्म जुदाई से। आवाजें हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की। गीत एक बार फिर से लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। व्हाट्सएप किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। कवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क। नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है। सब्जी मंडी झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत, मयंक भाटिया, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और संघई परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनिए फिल्म जुदाई का गीत अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूल्हे राजा का गीत, जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने, धुन तैयार की थी आनंद मिलिंद ने। पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रेणु, रिया, दिव्यांशी, आराधना, रौनिका यादव, चंद्रेश कौहर और सुनील पाठक। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार ने।

नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। कुंभारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। लीजिए अब सुनिए। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म डुप्लीकेट से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार हैं जावेद अख्तर। धुन तैयार की है अनु मलिक ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिकार और वाणी थांदी। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। आप सब सुनिए अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
3: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है। ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद

साथियों की पसंद पर फिल्म हेलो ब्रदर से आवाजें हैं जसपिंदर नरूला और बाबुल सुप्रियो की, बोल समीर के हैं, धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने। खमरिया छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुना चाह है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने। मजनू का टीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दीदी वैदेही जोशी और बेबी हंसिका जोशी, साथ में कुमारी अंकिता जोशी और लक्ष्मी और ध्रुव। आप सब सुनिए फिल्म हेलो ब्रदर का गीत जसपिंदर नरूला और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में।

या अपार ढींगिया। इसी गीत को सुनना चाहा है। जालंधर से संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल साहनी, आप सब सुनिए फिल्म हसी तो फसी का गीत। चिन्मयी श्रीप्रदा और शेखर की आवाज़ों में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत है विशाल शेखर का।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। पोटियकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया।

0: हंसी तो फंसी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित इस घंटे की खास खबरें।
1: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक समिति का गठन करें जो एक समान राष्ट्रीय नीति बना सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविन्द्र भवन में आयोजित युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार महानाट्य में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राष्ट्रीय नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला प्रारंभ हो रही है। कार्यशाला का विषय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रगति चुनौतियां और भविष्य की दिशा है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन किया है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति के कार्यक्षेत्र में विधायी प्रस्तावों का परीक्षण, नीतिगत मामले और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के पांचवें दिन 1300 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 9 लाख से अधिक नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। नगरीय विकास और आवास विभाग ने भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतनाम नगर निगम के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। और राजधानी भोपाल में 10 दिनों के बाद कल देर रात बारिश का दौर शुरू हो गया है जो लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भिंड, मुरैना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं प्रदेश भर में बारिश का दौर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओ नमस्कार, हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ आज हम बात करेंगे कि बीते समय में जो बातें हो जाती हैं वो लौटती नहीं, तो हम ऐसा क्या करें कि अपने जीवन को अंडू कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए किसी खास दिन, नया साल, जन्मदिन या किसी खास मौके की राह ना तकें और अपने जीवन में जो वर्तमान में अच्छी बातें हो रही हैं उनका सुख प्राप्त कर सकें। तो जल्दी से डायल कीजिए 2160902 पर और कीजिए हमसे ढेर सारी बातें और सुनिए हमारी पसंद के गीत। हेलो।
2: हेलो, फोन करे
1: जी ही, कौन साहब बोल रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। धन्यवाद मैडम। मैं शिलेश कुमार साहू, रानी गांव नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से।
1: हाँ जी, धमतरी से आप दिलीप जी बोल रहे हैं?
2: नहीं, शिलेश कुमार साहू।
1: अच्छा जी, और क्या हाल है आपके?
2: हाल चाल बढ़िया है।
1: मौसम कैसा है?
2: मौसम बहुत अच्छा है और अभी कल बारिश हुआ है, तो इससे हम किसान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ। खेतों में पानी हो गया।
1: जी जी जी।
2: धान के रोपाई कार्य प्रगति में है।
1: और परिवार में कौन कौन है?
2: सब है, संयुक्त परिवार है।
1: हाँ
2: जी।
1: तो छिलीप जी, आज हम जो बात करेंगे ना वो ये है कि जिंदगी हमें हर समय किसी ना किसी मोड़ पर उलझाती है, ये हम सभी ने देखा है। हम अपने कई बार रास्ते से भटक जाते हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि बीते समय में काश कोई ऐसा होता जो हमें समझा पाता, हम अपने जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर पाते, है ना? जैसा मोबाइल और कंप्यूटर में होता है ना, तो ऐसा कि कभी है ना हमें पुरानी चीजें निकालनी होती है तो हम निकाल लेते हैं, तो क्या ऐसा अपने जीवन में संभव हो पाता है?
2: अब कई बार तो जैसे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, करके करते हैं और उसमें कुछ उलझने आ जाता है।
1: हाँ हाँ।
2: और उस उलझन की वजह से अपने कार्य में बाद में पता चलता है, रुकावट होता है।
1: हाँ।
2: तो जैसे हमको कोई समझाते हैं कि ये काम इधर से नहीं करना इधर, तो हम लोग क्या है वो अच्छा ही रास्ता को ना अपना के गलत मार्ग से चलते हैं।
1: जी जी।
2: और बाद में पछतावा होता है।
1: हाँ।
2: तो फिर बाद में वही दिमाग में आ जाता है कि काश हम लोग ये करे होते।
1: हाँ।
2: तो हम लोग इस प्रकार के नहीं होते, तो इस प्रकार के अपने जिंदगी से हम लोग कुछ नया सीखने को मिल जाता है।
1: हाँ, लेकिन क्या बीते वक्त की बातें हमें याद करना चाहिए या हमें वर्तमान में जो खुशियाँ मिल रही है उनमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग बुजुर्ग लोग का मार्गदर्शन है।
1: हाँ जी,
2: है ना, उनका जो अनुभव है जीवन का।
1: जी जी।
2: और हमको भले ही वो गलत लगता है उस टाइम में।
1: हाँ।
2: ये क्या बोल रहे हैं, इसे कहते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: लेकिन जब हम जिंदगी के राह में आगे बढ़ते हैं और जब उलझने होती है,
1: जी जी,
2: तो उस टाइम को हम फिर याद करते हैं, वाकई में वो जो बुजुर्ग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो बीते हुए पल में जो बुजुर्गों ने हमें नसीहतें दी थी वो याद करके हम अपने वर्तमान को सुधारे तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना।
2: और जिस प्रकार के हम लोग भी क्या है, अब जैसे मैं अब 45-46 साल का हूं।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: और अपना भी कुछ अनुभव है।
1: हाँ।
2: अब उस अनुभव को हम लोग बच्चे को बताते हैं।
1: हाँ।
2: कि इस प्रकार की ये राह हमें चलना है।
1: हाँ।
2: क्योंकि हमको भी अनुभव हो गया है कुछ।
1: हाँ।
2: हाँ। इस प्रकार के अपन सकारात्मक राह में ही चलना चाहिए।
1: बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात करी आपने, धन्यवाद। बहुत लंबी बात हो गई आपसे और कल के प्रोग्राम में आप अपनी बातचीत सुन सकेंगे, ठीक है जी। नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी।
1: ये बहुत दिनों बाद फोन लगाया है। आवाज मिल रही है? कभी
0: आवाज़ मिल रही है लेकिन बहुत कम आ रही है।
1: कभी आपकी कम आती है तो कभी कभी हमारी कम पहुंचती है।
0: हाँ, ये क्या बात है।
1: ये तकनीकी कुछ कारण होगा।
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: कार्यक्रम में आज बहुत दिनों बाद हमने फोन लगाया है। कम से कम 2 या 3 महीने के लगभग अंतराल हो गया है।
0: अच्छा, आपका शुभ नाम जी
1: मैं दशरथ सेन।
0: दशरथ सेन। आपसे पहले भी बात हो चुकी है। हाँ,
1: जी, हुई थी ना बात हमारी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: यही सीतामऊ रोड, नाटाराम, जिला मंदसौर।
0: अच्छा जी, और क्या हाल है आपके?
1: जी बढ़िया है। अभी हम सब किसान भाई पानी को लेकर बहुत परेशान हैं।
0: हाँ
1: बड़ी घेंच लगने
0: हाँ
1: से किसान की जो फसल, हमारी जो फसल है,
0: हाँ
1: वो पानी के लिए बेताब है। और सभी किसान भाई इंद्र राजा से यही कामना करते हैं कि जल्दी से पानी बरसाओ।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि पानी ने तो वाकई अभी ऐसा बना के रखा माहौल, उमस, गर्मी, बेचैनी, बीमारी, सब है ना।
1: जी बिल्कुल। और
0: पानी
1: पानी
0: की
1: की बिना
0: बहुत
1: हमारे
0: ज़रूरत
1: लिए
0: है।
1: कुछ
0: आधे
1: नहीं।
0: से ज़्यादा जुलाई ख़त्म होने को आ गया है और पानी अभी गायब है।
1: पानी के सिवा हर कोई अधूरा है। पानी के बिना ही हमारा जीवन चल रहा है। पानी नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? पानी होगा तो किसान भाई खेत में अन्न उगाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो अन्न नहीं उगाएगा। अगर
0: हाँ
1: नहीं होगा तो फिर हम सबका पेट कैसे भरा जाएगा?
0: बिल्कुल सही। चलिए, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, पहले उस विषय पर आए कि जिंदगी में जो भी पहले बीत चुका होता है ना, तो कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि वो पहले जो हमारा समय था वो कितना अच्छा था, काश वैसा समय फिर आ जाता। तो ऐसी कोई टाइम मशीन आप भी सोचते हैं कि होना चाहिए कि बीते हुए समय में एक बार पुनः चले जाओ?
1: जी बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही बीते दिनों की बातें कर रहे थे लोग
0: हाँ
1: कि हमारे जमाने में क्या था। कई भोजन कार्यक्रम का होता था तो सभी हिल मिल के एकजुटता दिखाते हुए भोजन को करवाते थे, साथ में शामिल होते थे। ऐसा
0: हाँ
1: नहीं कि इनका कार्यक्रम बिगड़ जाए
0: हाँ
1: या फिर कोई हंसी हो जाए, ऐसा कुछ होता था। फिर पुरानी बात, बचपन की बातें हैं तो बातें बहुत ही वो यादें हैं,
0: हाँ
1: तो वो यादें ही रह चुकी हैं। अब तो क्या है कि पहले वाली बात अब जमाने में है नहीं।
0: हाँ
1: जो पहले एक भाईचारा था,
0: सही बात है।
1: एक भाईचारा था, एक स्नेह था, प्रेम
0: हाँ
1: था, वो अब शायद कहीं गुम हो गया है।
0: बिल्कुल सही।
1: सभी अपने अपने ध्यान में है। पहले जितना लोगों के पास काम था, फ्री
0: हाँ
1: थे, दूसरे के लिए
0: हाँ
1: समय था
0: बिल्कुल
1: देने के लिए, कि आपके लिए हम पूरा दिन आपके साथ में रहेंगे निस्वार्थ,
0: हाँ
1: है ना। और आज के जमाने में स्वार्थ के बिना कोई बात ही नहीं कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है।
1: सच्चाई
0: तो
1: है। और
0: चलिए
1: भागो
0: दशरथ
1: भाग हो
0: जी।
1: गया है।
0: हाँ
1: इतने इतने काम, इतने साधन होने के बाद भी लोगों के पास टाइम नहीं है बात करने का।
0: बिल्कुल
1: इतनी भागम
0: इस
1: भाग चल रही
0: हाँ
1: है और सब मिलावट खोरी हो गए हैं। मिलावट का खाना खा रहे हैं।

0: पहले हमारे घर में घट्टी थी, घट्टी से
1: हाँ
0: गेहूं के दानों को पीसा जाता था, उससे लापसी बनाई जाती थी, वो कितना स्वादिष्ट था भोजन। आज के जमाने में चक्की चल रही है, सब आटा फेंक जाता है सबका, ये
1: बिल्कुल
0: हाल
1: सही
0: हमारा
1: कह
0: चल
1: रहा
0: रहा
1: है,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपसे दशरथ जी बात करके बहुत अच्छा लगा, दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं इसलिए आपसे हम इतनी ही बात कर पाएंगे आज,
0: जी
1: ठीक है।
0: बिल्कुल, और पुराने दौर से आज दिन तक आकाशवाणी बदली नहीं है, उसकी आवाज आज भी दुनिया में जा रही है। धन्यवाद।
1: बिल्कुल धन्यवाद।
2: जीवन से भरी तेरी आंखें,

0: हेलो हेलो, हाँ
1: जी बोले जी।
0: जी नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी मैं हूँ
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ मैम। जी
0: जी नीरज जी, कहाँ से?
1: अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश। जी
0: जी,
1: ठीक
0: क्या हाल है आपके?
1: है मैम, बढ़िया है।
0: नीरज जी, आज हम बात कर रहे हैं कि बीते समय में जो वक्त बीत चुका होता है उसे हम याद करते हैं और सोचते हैं कि काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जिससे हम अपने बीते समय में दोबारा जा सकते। तो
1: जी
0: आपका क्या मत है इस मामले में?
1: बिल्कुल, मैं पर सहमत हूँ कि बीते कुछ ऐसे पल हैं जो
0: हाँ,
1: लग कि एक बार दोबारा आ जाए तो एक बार फिर वो याद ताजा हो जाए। जी
0: बिल्कुल। तो क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: मैम, अब क्या है, बीता हुआ चीज तो दोबारा आता नहीं है, तो
0: हाँ,
1: वो ही है कि जो एक याद मतलब ताजा है करने के लिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हाँ वो वक्त वही है मैम।
0: बिल्कुल। तो हम तो इसलिए यही कर सकते हैं कि है ना, अपने दिल को खोल कर जिए, है ना, सोचे कम करे ज्यादा, तो शायद हम अपने बीते वक्त को उतना याद करके घबराएंगे नहीं, बल्कि उसमें जो कुछ अच्छी चीजें हो चुकी होंगी उनसे अनुभव लेकर अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे,
1: बिल्कुल
0: है ना? तो
1: जी,
0: चलिए नीरज जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी।
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, क्या हाल है?
1: बढ़िया है यार।
0: मौसम कैसा है छत्तीसगढ़ का?
1: अभी तो 2-3 दिनों में बारिश हुआ है। हाँ
0: हुआ है बारिश?
1: जी, ठीक ठाक हुआ है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: और क्या काम करते हैं योगेश जी?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है।
0: अच्छा। योगेश जी, आज हमने जो विषय रखा है ना, हमारा कार्यक्रम है आज, आपकी बात आपकी गीत हमारे,
1: जी
0: तो हमने विषय रखा है कि बीते समय में जाने के लिए हम कई बार सोचते हैं कोई टाइम मशीन होनी चाहिए,
1: जी
0: वो वक्त हमारा बहुत अच्छा था। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं?
1: अब देखिए, जब पुराने चीजों को या बचपने को याद करते हैं तो
0: हाँ
1: काफी वो तो सुकून देता ही है, क्योंकि
0: हाँ
1: बचपन कहा भी गया है ना, बचपन हर गम से बेगाना होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो बचपन वही है जहाँ पे ना तो ज्यादा किसी तरह का दबाव होता है, ना
0: हाँ
1: किसी तरह का विशेष कोई जिम्मेदारी होता है, केवल अपने धुन में मगन रहना।
0: बिल्कुल सही बात है। और हम बस यही कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि बीते समय में जाने के लिए तो कोई भी टाइम मशीन ना तो है ना होगी, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो हम अपनी पुरानी यादें कई बार सहेज के रखते हैं ना, कि अरे ये तो हमारा उस समय की चीज़ है, इसे हमें किसी को नहीं देना है, तो ये वैसा है तो ये ऐसा है, उसकी हम अगर तीन ढेरियाँ बनाएं, जिसका हम ये कर सकते हैं कि है ना, कौन सी हमें रिसाइकिल करनी है, कौन सी हमें दान करनी है और कौन सी हमें उपयोग करनी है, तो शायद हम अपने बीते वक्त को बहुत अच्छा कर सकते हैं वर्तमान में, है ना
1: जी,
0: जी। तो चलिए
1: और
0: ऐसा ही कुछ
1: हमारे
0: हम
1: यहाँ
0: करें, ये सोचते हैं हम, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में इस विषय को रखा
1: जी,
0: जी।
1: हमारे यहाँ एक जो बहुत पुरानी है, एक दीपक है चिड़िया के रूप में, वो
0: हाँ
1: लगभग 100 साल पुराना है।
0: हाँ अच्छा।
1: जी
0: तो उसका तो आप उपयोग करते होंगे?
1: हाँ जी, जैसे लाइन वाइन गोल हो जाता है ना तो उसका
0: हाँ
1: उपयोग अभी भी होता है।
0: बस, तो कितना अच्छा, कितनी खुशी मिलती होगी आपको कि ये जो चीज़ें हम बचपन में इस्तेमाल करते थे वो आज भी हमने सहेज के रखी है और उसका उपयोग कर रहे हैं,
1: जी
0: है ना। चलिए
1: हाँ जी,
0: चलिए नीरज जी, आपसे, योगेश जी क्षमा कीजिए,
1: योगेश जी
0: आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आवाज़ आ रही है?
1: हाँ, आ रही हूँ।
0: कौन बोल रही हैं आप?
1: जानकी गुप्ता बोला है, ग्राम भवन धनगा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।
0: जानकी गुप्ता जी, टीकमगढ़ से।
1: हाँ, जिला टीकमगढ़ से।
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। मैं फोन लग जाता तो और अच्छे हो
0: सच
1: जाते।
0: में? फोन लगने के बाद अगर आप सच में बहुत अच्छी हो जाती हैं तो फिर तो पक्का हर हफ्ते लगाया करिए।
1: आटा लगा रहे थे।
0: हाँ, चलिए बढ़िया है। तो जानकी जी, बताइए कि है ना, जो आपका पुराना सामान है, बीते समय में पुरानी यादें हैं, उनको आप वर्तमान में किस प्रकार उपयोग में लाती हैं?
1: पुराना घर का पुराना
0: हाँ,
1: सामान है सुनने का।
0: आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, कहीं आप है ना अंदर हो? हेलो,
1: आ रही है आवाज?
0: आ तो रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है।
1: अच्छा, अब भी?
0: आप ठीक आ रही है?
1: अच्छा, अब बताइए मैम, खा क्या
0: मैंने
1: रही
0: कहा
1: हूँ।
0: बीते समय में जाने के लिए आपको भी लगता है क्या कि कभी काश पुराना वक्त मिल जाए दोबारा, हम उसे फिर से जी सकें?
1: लगता तो हेल्प मिलता थोड़ी है, पुराना वक्त दिन निकल गया।
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कभी कि जो आज हम जी रहे हैं, भविष्य में इस वक्त को भी इसी तरीके से याद करेंगे?
1: हाँ, कर लेती यार, जो अपना समय बीत गया उसको याद कर लेती यार। एक काया सा था समय।
0: हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो वर्तमान में हम जी रहे हैं उसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए?
1: हाँ, जिया थे अच्छे से, सोचते हैं कि हाँ चलो जो निकल
0: बिल्कुल,
1: उसको
0: जो
1: अच्छे से
0: पहले नहीं
1: जिया।
0: कर पाए वो करें, खूब खुशियां बांटे और खूब खुद खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, ऐसा हो
1: जी
0: सकता है
1: जी
0: ना? क्योंकि
1: हाँ, हो
0: बीते समय
1: सकता
0: में
1: है।
0: जाने के लिए तो कोई मशीन नहीं है।
1: जो निकल गया समझ बात नहीं, तो निकल ही गया। जो अपना
0: वही,
1: समय चला उसको भी अच्छे से वह अच्छे से जी गया, अच्छे से
0: बिल्कुल
1: वह।
0: बिल्कुल। हाँ, चलिए जानकी जी, आप क्या काम करती हैं?
1: बस खाना ना बनाया थी, घर का काम करती,
0: अच्छा,
1: गृहिणी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बातचीत करके हमें बहुत खुशी हुई, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, इंद्रभान सिंह जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता है,
1: मैं सबसे पुराना श्रोता भी हूँ मैडम
0: पुराने
1: आपके।
0: श्रोता है, और आपके बहुत सारे लेटर्स आज भी आकाशवाणी में पढ़े जाते हैं।
1: जी मैडम,
0: और
1: और
0: सुनाइए, क्या हाल है आपके?
1: ठीक है मैडम, मैं ड्यूटी परेड में हूँ और वहीं जंगली नर्सरी के बीच में आया हूँ मैडम। यहाँ नेटवर्क बढ़िया मिलता है, मौसम एकदम बादल किया हुआ है, लाइटिंग बादल है, उमस टाइप की गर्मी है, हवा भी बंद है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलता है तो हवा ठंडा लगता है। और यहाँ मतलब कि यही पानी गिरने के कगार में तो अभी नहीं है, लेकिन कल पानी खूब गिर रहा था मैडम। कल हमारे घर तक भी गिरा है और परसों भी ड्यूटी ड्यूटी में खूब गिरा था, शनिवार को ड्यूटी पानी।
0: तो
1: तो
0: इंद्रभान सिंह जी, आज हमने जो विषय रखा है वो ये रखा है कि बीते समय में जाने के लिए कोई टाइम मशीन होनी चाहिए, ऐसा आप भी सोचते हैं क्या?
1: बीते में इसमें अब मैडम क्या है, वैज्ञानिक क्योंकि युग क्या है, और इसमें वैज्ञानिक लोग जो ना बना दे मैडम, क्योंकि वो उनके ऊपर है मैडम, और वही लोग तो बनाते हैं मैडम बीते
0: नहीं नहीं
1: युग।
0: नहीं नहीं मेरा मतलब है, उसको आप अलग उसमें ले रहे हैं कि क्या आप भी सोचते हैं कि बीता वक्त जो बीत चुका है वो ज्यादा बेहतर था?
1: बीता वो चीज वो पहले अच्छा था मैडम, अभी जो अभी हमारे जो टेक्निकल युग में हुआ है, इसमें परिवर्तन हुआ है, तो उसमें भी कुछ फायदा भी हुआ है। तो
0: हाँ, तो आप ये सोचते हैं कि पहले जो हम जीवन जी चुके हैं वो ज्यादा अच्छा था, या वर्तमान में हम जो जी रहे हैं उसमें ही आप बहुत खुश हैं?
1: पहले वाला ठीक था मैडम।
0: ऐसा हमेशा सबको लगता है ना,
1: जी।
0: लेकिन है ना, हमारा कहना ये है कि वर्तमान में जो हम जी रहे हैं ना उसे बहुत खुशहाल बनाएं, क्योंकि भविष्य में जाके आप इस वक्त को कहेंगे कि वो बीता वक्त ज्यादा अच्छा था,
1: जी
0: है ना? जो बीत चुका उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन जो अब हमारे हाथ में है उसे तो हम बेहतर बना सकते हैं।
1: जी
0: चलिए, बस इसी बात पे हमको आप लोगों की भी राय लेनी थी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये तो मैडम ये तो बात आपकी गीत हमारी के ये है ना,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल, बात आपकी, गीत हमारे।
1: इसमें गीत जो बजता है मैडम वो 11 बजे बजता है ना।
0: 11 बजे से कल प्रोग्राम आएगा और गीत हमारी पसंद के होंगे इसमें।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो।
0: जी
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: कौन बोल रहे हैं?
0: नेत्राम खोजर बोल रहे जी, कोठिया।
1: नेत्राम जी,
0: हाँ जी,
1: कब कॉल किया था आपने?
0: अब नहीं कर रहे जी कॉल, आज इतना लगा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: नेत्राम खोजर बोल रहे जी, कोठिया से। हाँ
1: कोठिया।
0: जी,
1: अच्छा, क्या हाल है आपके?
0: सब ठीक है जी।
1: अच्छा, और
0: और
1: नेत्राम जी,
0: हमारे
1: आप
0: घर।
1: ये बताइए कि आप है ना, जो बीता हुआ समय बीत चुका है उसमें ज़्यादा खुश थे कि आज खुश हैं?
0: जी
1: जो समय बीत चुका है उसमें ज़्यादा खुश थे, या जो अभी जी रहे हैं जिंदगी उसमें ज़्यादा खुश हैं?
0: नहीं, जिंदगी जी रहे अच्छे खुश हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मतलब वर्तमान में जो
0: हाँ
1: आपके पास है आप उससे संतुष्ट हैं,
0: हाँ जी,
1: चलिए बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ बालक
1: हर
0: भी
1: कोई ये
0: बोला।
1: कह रहा है कि
0: हाँ
1: जो समय बीत चुका है वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हकीकत ये है कि जो बीत गया सो बीत गया, जो आज
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: वही सच
0: हाँ जी,
1: है ना? चलिए
0: बोला तो
1: नेत्राम
0: है,
1: जी,
0: यही
1: आपसे
0: बोला है।
1: बातचीत
0: हाँ
1: करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे
0: जी,
1: से आप अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे, ठीक है
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जी?

0: हेलो,
1: ओ, हम कटनी से बोल रहे हैं, प्राची वर्मा जी।
0: प्राची वर्मा। हाँ प्राची जी, बोलिए, कैसी हैं आप?
1: जी हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। तो आपने क्या बात, आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में फोन नहीं लगाया था क्या?
1: नहीं, हम लगाए थे लेकिन कोई जेंट्स के अनाउंसर था ना, इसलिए हम बोले ये तो किसी और को लगता लग रहा था, हम काट दिए।
0: अच्छा, ऐसा है, कहीं
1: जी
0: और लग गया होगा।
1: हाँ, तो हमने डर के काट दिया, हम बोले पता नहीं किनको लग गया, हम तो आकाशवाणी को लगा रहे थे।
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और प्राची जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं कि कुछ काम करती हैं
1: नहीं नहीं
0: बाहर?
1: नहीं हमारी शादी नहीं हुई है।
0: शादी नहीं हुई?
1: जी नहीं जी,
0: अच्छा, तो क्या करती हैं आप?
1: हम जॉब करते थे पर छोड़ दिए, बीमार
0: क्यों?
1: हो गए थे बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, आपकी सरकारी नौकरी थी?
1: जी नहीं,
0: अच्छा,
1: आंगनवाड़ी में थे।
0: चलो कोई बात नहीं। अभी कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है?
1: अच्छी चल रही है जैसे चलनी चाहिए,
0: अच्छा,
1: आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले जिंदगी।
0: अरे वाह। तो प्राची जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीते समय में जो बातें बीत चुकी हैं वो ज़्यादा अच्छी थी, और काश कोई टाइम मशीन होती जो हमें बीते वक्त में ले जाती, ऐसा क्या लगता है आपको?
1: ले जाती है ना, मुझे लिखने का शौक है तो
0: अरे वाह,
1: हम तो चले जाते हैं, अब जो बीता हुआ कल है उसमें लगता है
0: अरे
1: कि सामने खड़ा है।
0: वाह, सही बात है। आपसे बेहतर तो कुछ इन बातों को समझ ही नहीं सकता कोई।
1: तो जी हमने, हमारे 5,000 हो गए हैं, हमने इतना लिख लिए हैं।
0: अच्छा, चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत हुनर है आपके अंदर और आप लिखती
1: मेहनत
0: हैं।
1: तो पर किस काम का जो काम ना सके।
0: बिल्कुल, ऐसा कैसे कह रही हैं आप? अपने हुनर के जरिए बीते वक्त में पहुंच जाती हैं, इससे बेहतर कुछ हो सकता है? हम तो सबसे यही बोल रहे हैं कि जो वर्तमान है, जो आज है, वो सच है, उसमें जियो और उसमें खूब खुश
1: आज
0: रहो।
1: में ही तो जी रहे हैं, पर गुजरा हुआ कल सामने तो आ ही जाता है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। लेकिन गुजरे हुए वक्त को हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ नसीहतें ले सकते हैं, कुछ किसी को
1: चलिए हम
0: गिफ्ट।
1: आपके लिए अपना लिखा कुछ सुनाते हैं।
0: सुनाइए।
1: खुशियों का मेला हो ना कोई झमेला हो,
0: हाँ,
1: रिमझिम करती बारिश हो, हम हो तुम हो और कुल्हड़ वाली चाय का ठेला हो।
0: वाओ, बहुत अच्छा। चाय याद दिला दी आपने मुझे, सच में चाय पीने का मन होने लगा, क्योंकि सर्दी हो रही है मुझे भी। है ना?
1: चाय के तो हम भी बहुत शौकीन है,
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: कोई खाने को ना पूछे, चाय को पूछे।
0: चलिए कभी होगा तो बिल्कुल चाय पे मिलेंगे। चलिए, अभी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे यहीं संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार महानाट्य में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के 5वें दिन 1,300 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 9,00,000 से अधिक नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। नगरीय विकास और आवास विभाग ने भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम नगर निगम के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। और प्रदेश भर में आज बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कल देर रात से बारिश शुरू हुई जो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, मुरैना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभिन्न जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म वारिस से। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, आरडी बर्मन का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है अम्बेडकर चौक खुरई से लिखने वाले हैं राम सखी, परमानंद सौरव, गौरव, किशोरी बोस, एल पी मोहित।

अगला गाना लिया है हमने मुकेश की आवाज़ में, और इसको फिल्म जो है वो है तीसरी कसम। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, घिसू दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ कुणाल दिलवारे, और राजपुर से इन्होंने ये पत्र लिखा है। राजपुर मध्य प्रदेश है या क्या है इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, कंवर कॉलोनी बड़वाह से लिखने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म गाइड से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखा है इन्होंने गौरी नगर इंदौर से, आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और इसी गाने को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, और गाने के लिए फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास से मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म बेटी बेटे से। आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: अगला गाना लिया है हमने फिल्म वचन से, और बेटी बेटे के बाद में ये अगला गाना है, और आवाज़ इसमें मोहम्मद रफ़ी की है, असरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जी की शंकर संगीत है, और उस गाने की और इस गाने की दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब, मुश्तबा खान, रऊफ शाहिद और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, और अगला इसी गाने के लिए जो फरमाइश है यह है बेरड़ी, बेरड़ी से लिखने वाले हैं हुकुम करम कर, सुनीता करम राकर, हार्दिक करमरकर और प्राची करमरकर, तनु करमरकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।
1: संभल कर चलो जाना वरना गिर जाओगी, जवानी मस्त है डगर।

0: आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल जले का एक गाना, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है गांव भड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं रघुनाथ मालवीय, भंवर बाई, सुषमा, पुष्पा, कमला, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश ने। सुनते हैं ये गाना।
1: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
2: क्या?
1: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता।
2: मैं क्यों लिखूंगी तो ये सारे...

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत कामनी का एकांतारे का 6 एपिसोड।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। लीजिए सुनिए कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 6 भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं भयानक जंगल के हिंसक भेड़ियों से बचने के लिए। एक अजनबी राजा को बबूल के पेड़ पर चढ़ जाने को कहता है और उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर चला जाता है। आचार्य नागदत्त के आश्रम में नीलमणि घायल अवस्था में बंधा हुआ मिलता है। नीलमणि की अच्छी तरह से परिचर्या और शुश्रूषा से वो ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त उसे अवंती पहुंचाने का निर्णय करते हैं। इस काम के लिए वो चंद्रसेन को चुनते हैं और साथ के लिए एक कृषक गोप को भेजते हैं। चंद्रसेन और गोप अश्व नीलमणि को लेकर अवंती चलते हैं।

चंद्रसेन ने अश्व की बहुत सेवा की थी, उसे नीलमणि से लगाव भी हो गया था। फिर आचार्य चाहते थे कि आश्रम की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो राजधानी से कुछ औषधियां और वस्त्रादि भी लेता आए। चंद्रसेन के मार्गदर्शन के लिए दैनिक भृत्ति पर एक गोप उसके साथ किया गया। आचार्य नागदत्त ने दो पत्र भी चंद्रसेन को दिए थे, एक अपने मित्र महामात्य पूर्ण रथ के प्रति संबोधित था, जिसमें राजा भर्तहरि की अश्व के भटक कर सेवाश्रम पहुंचने का विवरण था, और दूसरा अपनी पत्नी देवी वसुंधरा के लिए, जिसे 6 वर्ष पहले वो अवंती में छोड़ आए थे।

0: बंधु गोप
1: जी,
0: अभी तुमने बताया था कि अवंती यहाँ से एक योजन दूर है।
1: जी ब्रह्मचारी जी।
0: और कल से अब तक हम कितना चलकर आए हैं?
1: ये भी तो बताया था, चलिए पुनः बताता हूँ। हाँ। कि लगभग 6 योजन चले होंगे।
0: अच्छा
1: ब्रह्मचारी जी, आप बार बार ये सब क्यों पूछते हैं? थक गए हैं क्या?
0: नहीं नहीं, थका नहीं हूँ।
1: विचित्र हैं आप। कसी हुई काठी वाला इतना पुष्ट चपल सबल अश्व होते हुए भी पैदल चलने की हट कर रहे हैं। ग्रामवास के लोग हमें देखकर आश्चर्य करते हैं, आपसे हंसते हैं, पूछते हैं और व्यंग करते हैं।
0: अरे
1: अरे, किस किस को बताएं भाई कि राजा का अश्व है, साधारण जन इस पर नहीं बैठते। अब चलो मान लिया कि ये बंधन युक्त अकुलीन के लिए है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, बैठ लेते तो थकते नहीं और बार बार प्रश्न भी नहीं पूछते। कितना चलाए और कितना अभी चलना है।
0: अरे अरे, तुम तो रुष्ट हो गए बंधु।
1: कठिनाई यही है ब्रह्मचारी जी कि आप पर रुष्ट भी तो नहीं हुआ जा सकता, इतने सरल हैं आप, सरल और भोले।
0: बंधु, अश्व पर न बैठने का एक कारण है मेरे पास। पशु भी जीव है और यदि मैं इस पर अपना भार ला दूंगा तो हिंसा होगी।
1: हिंसा? हिंसा क्या होती है भोले बाबा?
0: देखो, किसी जीवात्मा को मन वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाना हिंसा होती है बंधु।
1: यही हिंसा है तो महाराज, फिर तो जीवन ही असंभव हो जाएगा।
0: कैसे?
1: अरे हिंसक पशु आएंगे और हमारी खेती को उजाड़ देंगे, बिना अन्न के हम कैसे जिएंगे? अब हिंसक चोर डाकू लुटेरे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमारे प्राण भी, और हम नतमस्तक अत्याचार को सहकर कहते रहेंगे अहिंसा परम धर्म है बंधु।
0: उनसे बचने के उपाय करना चाहिए। उत्तर में प्रतिहिंसा आवश्यक नहीं है। अरे, अवंती की अट्टालिकाओं के शिखर कलश दिखने लगे हैं, क्या आ पहुंचे बंधु?
1: नहीं, अभी भी हमें 2 कोस और चलना है।
0: अरे,
1: 3 घड़ी का समय अभी और लगेगा।
0: अच्छा,
1: पहुंचते पहुंचते तो समझ लीजिए गोधूली का समय हो जाएगा। चलिए चलिए।
0: हाँ, अवंती मेरे लिए एक स्वप्न जैसा है बंधु, स्वर्ग के होने या ना होने का प्रमाण भी नहीं है, स्यात एक कल्पना भर है जो लुभाती है, किंतु इस नगर में सुख सुविधा विलास की सारी सामग्री उपलब्ध है जो इस कल्पना की रचना करती है, किंतु मनुष्य को इनके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सुख सुविधाएं सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, जियो और जीने दो, ठीक है ना बंधु?
2: परिचित पथ पर आ पहुंचने के कारण नीलमणि उत्तेजित हो जाता है और हिनहिनाता है।
0: अरे अरे अरे नीलमणि, तुम भी जान गए कि अवंती आ पहुंची? उत्तेजित मत हो, हमें भी साथ साथ चलना है।
1: अरे ये क्या कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, वल्गा को मत खींचिए।
0: क्यों?
1: अरे अश्व को पीड़ा होगी, ये तो हिंसा होगी ना ब्रह्मचारी जी, क्यों, ठीक है ना?
0: तो क्या करूं? अरे बलगा ढीली होगी तो भाग जाएगा।
1: तो भाग जाने दीजिए, उसका परिचित नगर है, भागकर अपने स्थान पर ही पहुंचेगा, जाने दीजिए।
0: किंतु इसे वहां तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है, महामात्य तक आचार्य का पत्र भी तो पहुंचाना है।
2: दूर से कई घोड़ों के टापों की आवाज निकट आ जाती है, राज्य के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं।
3: रुको, इन दोनों को बंदी बना लो।
0: लेकिन हमारा अपराध क्या है नायक?
3: यह अश्व तुम्हें कहां से मिला?
0: कोई अज्ञात व्यक्ति इसे हमारे सेवाश्रम के द्वार पर बांध गया था, घायल था, हमने इसकी परिचर्या की, हमें ज्ञात हुआ कि ये महाराज भर्तृहरि का प्रिय अश्व है, सो इसे पहुंचाने जा रहे हैं। महामात के नाम आचार्य श्री का पत्र है मेरे पास।
1: अब चोरी की हुई वस्तु इस तरह दिन दहाड़े नहीं लाई जाती नायक।
0: हाँ?
1: और वो भी उस स्थान पर जहां उसे सब चीनते हों। हम आचार्य नागदत्त के सेवाश्रम से आए हैं, उनका पत्र है हमारे पास, और ये ब्रह्मचारी जी हैं, इनकी वेशभूषा से नहीं जाना आपने।
4: क्षमा करें, चलिए नीलमणि को हम ले चलते हैं।
5: लेकिन यह तो अड़ रहा है, लगता है ब्रह्मचारी जी आपके बिना नहीं जाए गए हैं आगे।
6: चलो भाई चलो नीलमणि चलो, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
4: सैनिक तुम वहां ले जाकर सूचना दो कि हम नीलमणि के साथ वहां पहुंच रहे हैं।
1: हाँ, और हम भी जो सेवाश्रम से नीलमणि को यहां तक लाए हैं।

0: नीलमणि को लाने के लिए स्वयं महामात्य वहां उपस्थित होते हैं।
1: अपने घर आ गए हो नीलमणि तुम। राजा भर्तृहरि का आवास है ये, और तुम्हारा भी, ये सब तुम्हारा अपना ही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं।
2: अश्वहार, नीलमणि को संभालो। आप कहां से आए ब्रह्मचारी जी? नीलमणि आपको कहां मिला?
1: हम आर्य नागदत्त के सेवाश्रम से आए हैं महाराज। वहीं कोई एक दिवस नीलमणि को छोड़ गया था घायल अवस्था में। आचार्य श्री ने महामात के लिए एक पत्र भी दिया है।
2: अच्छा,
1: जो उन्हें सौंपना है। क्या आप बताएंगे कि महामात से कहां भेंट हो सकती है? और मान्यवर, मैं ब्रह्मचारी नहीं, सेवाश्रम का एक अकिंचन सेवक मात्र हूं। चंद्रसेन नाम है मेरा। यह वेशभूषा मुझे अच्छी लगती है।
2: महामात्य आपके सामने है
1: क्या?
2: मैं ही महामात्य पूर्ण रथ हूं। आर्य नागदत्त का पत्र आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, और अब आप राजकीय अतिथि हैं। महास्पद, अतिथिशाला में इनकी व्यवस्था करवाएं।
1: आप महामात्य? प्रणाम निवेदन करता हूं। ये मेरे साथ आए हैं गोप, कृषक हैं। मान्यवर, पत्र ये रहा।
2: आप थके हुए होंगे, अतिथिशाला में जाकर विश्राम करें। प्रातः भेंट होगी।
1: जैसी आज्ञा।
2: तभी आर्य नागदत्त का उत्तर भेज दूंगा मैं।
1: हम दो एक दिन रुकना चाहेंगे। आचार्य श्री के लिए कुछ औषधियां ले जानी है। अभी तो हमने भगवान महाकाल के दर्शन भी नहीं किए। क्षिप्रा तट, रुद्र सागर देखना है।
2: हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, जब तक जी चाहे जब तक रहिए आप।
1: धन्यवाद।
2: सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। महास्पद ध्यान रखेंगे।

0: उज्जैनी का प्रथम दर्शन इतना मनोरम है तो भ्रमण कितना सुखदायी होगा। बंधु, हमें अवंतिका का भ्रमण करना है, कितना समय लगेगा?
1: ब्रह्मचारी महाशय, नगर का अंतर्विस्तार एक योजन है और वह चार योजन। भ्रमण 1 से 3 दिवस में भी संभव है और महीने वर्ष भी लग सकते हैं।
0: क्या?
1: हाँ, आप पर निर्भर है, आपके मंतव्य और आपकी प्रेरणा पर। अतिथिशाला आ गई।
0: अच्छा,
1: रथ से उतरिए। निरंजन।
2: आज्ञा श्रीमान।
1: ये महामात्य के अतिथि हैं।
2: श्रीमान,
1: इनका ध्यान रखना, किसी तरह की असुविधा ना हो।
2: श्रीमान,
1: रथ, शिविका, जो भी कहें उपलब्ध करवाना।
2: श्रीमान,
0: हमें 3 दिन रहना है।
1: जब तक चाहें आप रुक सकते हैं।

0: कहां से पधारे हैं आप दोनों?
1: सेवाश्रम से, दशपुर के मार्ग पर 5 योजन उत्तर में है।
0: पधारिए, आइए।
2: ब्रह्मचारी जी, स्नान ध्यान तो सकुशल संपन्न हो गया। राजभवन से कोई आया है।
1: राजभवन से कौन है?
2: महामात्य महोदय ने कहला भेजा है, उन्होंने आपका स्मरण किया है।
1: कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने स्मरण किया, मेरा उन्हें धन्यवाद निवेदन करें।
2: संभवतया आपके सन्मुख आशय स्पष्ट नहीं हुआ।
1: क्या?
2: महामात्य ने स्मरण किया है।
1: हाँ।
2: इसका अर्थ है वो आपसे भेंट करना चाहते हैं।
1: अच्छा।
2: उन्होंने आपको अभी बुलाया है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। सीधे कही गई बात ही समझ में आती है सरलता से बंधु। मित्र गोप
2: जी,
1: मैं अभी लौट कर आता हूँ, तब दर्शन और नगर भ्रमण के लिए चलेंगे, ठीक है?
2: हाँ ठीक है।

0: आइए ब्रह्मचारी जी, आप इस विशिष्ट कक्ष में विश्राम करें। महामात्य को आपके आगमन की सूचना है, वो पधार रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: जय जनेश आर्य।
3: जैन हो ब्रह्मचारी?
2: जन्म से तो नहीं आर्य, किंतु इस कठिन साधना मार्ग की ओर आकर्षण है। सेवा कार्य में जिस ऐन्द्रिक निग्रह और आत्मतप की आवश्यकता होती है, उसका अभ्यास इसी मार्ग से संभव प्रतीत होता है। मैं तो सेवक हूं आर्य।
3: बैठो।
2: धन्यवाद।
3: चंद्रसेन नाम है तुम्हारा।
2: महाराज,
3: श्रेष्ठ नागदत्त ने अपने पत्र में बताया है, नीलमणि की चिकित्सा करके तुमने अवंती राज्य और हम सब पर उपकार किया है। भाई, हम सब तो आभारी हैं तुम्हारे।
2: आपकी अनुकंपा है आर्य।
3: कुछ बता सकते हो नीलमणि किस दिशा से भटकता हुआ आश्रम तक पहुंचा होगा?
2: आर्य, ये जानने का प्रयत्न हम में

0: किसी ने भी नहीं किया। अश्व नीलमणि को हमने आश्रम के द्वार पर बंधा हुआ पाया था।
1: अच्छा,
0: वो नितांत अकेला था और शरीर पर घावों की पीड़ा से विचलित हो रहा था। हमें लगा कि तत्काल ही उसका उपचार आवश्यक है, खोजबीन का तो अवसर ही नहीं था। मैंने भेषज्ञ को कहा, आश्रम अध्यक्ष को सूचित किया, फिर सभी उपचार में लग गए। यदि वर्षा का व्यवधान ना हुआ होता तो हम कुछ पहले ही उसे यहां ले आते।
1: अच्छा, नीलमणि के आश्रम में पाए जाने की तिथि स्मरण है तुमको ब्रह्मचारी?
0: खूब स्मरण है आर्य। आश्रम के देवज्ञ से मैंने जानकारी ली थी। रोग के उपचार में ऋतु, नक्षत्र और स्थान का ध्यान रखा जाता है। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था और श्रावण का महीना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थात एक ही रात्रि में नीलमणि आश्रम जा पहुंचा था। वो एक रात्रि में 50 कोस तक चलने में सक्षम है, किंतु ऊबड़ खाबड़ अरण्यों राहों पर इतना चल पाना तो संभव नहीं। हो सकता है कि उसने 30-40 कोस की यात्रा की हो। सेवाश्रम पश्चिम में है, नरेश ने दक्षिण द्वार से प्रस्थान किया था, अर्थात चंद्रसेन
0: महाराज,
1: एक बार फिर आपको धन्यवाद।
0: महाराज,
1: महारानी पिंगला ने भी तुमसे भेंट का आग्रह किया है।
0: अच्छा,
1: कुमारस्पद तुम्हें उन तक ले जाएंगे।
0: आर्य, मुझे केवल 3 दिन रुकना है, भेंट और भ्रमण के लिए केवल 3 दिन।
1: अरे भाई, तुम्हारे लिए रथ और शिविका की व्यवस्था है, अतिथिशाला में भी पूरी व्यवस्थाएं हैं राज्य की ओर से, फिर संकोच कैसा। हाँ, अगर कुछ क्रय करना हो तो इन्हें रखो।
0: अरे किंतु
1: इसमें कुछ स्वर्ण और कुछ रौप्यक मुद्राएं हैं, अरे भाई बच जाएं तो आश्रम को दे देना।
0: अरे मुझे मुद्राओं की आवश्यकता नहीं, धन होगा तो चोर और तस्कर पीछे लग जाएंगे, इस भार की चिंता बनी रहेगी।
1: ब्रह्मचारी, तुम महानगर में हो, यहां कार्य व्यापार का आधार मुद्राएं ही नियमित निर्धारित करती हैं। फिर तुम्हारे साथ तो वो गोप भी है ना, उसकी आवश्यकताएं भी तो हो सकती हैं।
0: उचित है, वो तो ग्रस्त है, रख लेता हूं।
1: कुमारस्पद, ब्रह्मचारी को राजमहालय पहुंचा दें।
2: जी श्रीमान।

रथ पुनः राजपथ पर दौड़ने लगता है। चंद्रसेन की दृष्टि फिर से मार्ग की मनोरम्यता पर घूमने लगी। बीच बीच में महामात्य द्वार से प्रवेश के उपरांत दृश्य और भी मनोहर होने लगते हैं। स्थान स्थान पर रंगीन पिंजरों में बैठे शुक सारिका स्वागतम स्वागतम की ध्वनि निकालने लगते हैं।

0: यहाँ तक सब नहीं पहुँचते।
1: अरे
0: विशिष्ट जन ही यहाँ आ पाते हैं ब्रह्मचारी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: यहाँ कोई अपरिचित प्रवेश नहीं कर सकता।
1: अच्छा,
0: आप अतिथि गृह में प्रतीक्षा करें, महादेवी को सूचित कर दिया गया है।
1: हाँ,
0: रथ बाहर द्वार पर खड़ा रहेगा।
1: ठीक है।
2: चंद्रसेन अतिथि कक्ष में बैठ जाते हैं। महारानी पिंगला की परिचारिका वयसिका उनके सामने मधुरव्य एवं खाद्य पदार्थ रख देती है। तभी महादेवी पिंगला का आगमन होता है।

0: जाओ।
1: जो आदेश।
0: ब्रह्मचारी।
1: महारानी।
0: राजा भर्तृहरि का अश्व लेकर तुम ही आए हो।
1: बिल्कुल।
0: नरेश के विषय में तुम्हें कुछ ज्ञात है?
1: क्यों नहीं महादेवी, उनकी योग्यता, सिद्धता, न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता जगत विख्यात है।
0: कुछ और?
1: आप ही बताएं।
0: महाराज का अश्व तो तुम राजधानी ले आए, किंतु स्वयं महाराज नहीं लौटे हैं।
1: क्या?
0: अब तक किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। हम उनके समाचार के लिए उत्सुक हैं। तुम्हें कुछ ज्ञात है?
1: नहीं महादेव।
2: आहत अश्व, कई दिनों से नरेश का न लौटना, किसी सूचना का न होना, विषाद में डूबी महादेवी, अवश, आकुलता, चिंतित महामात्य, कुछ तो ऐसा अवश्य है जो शुभ नहीं है।
0: इसे कोई सूचना मिले तो हमें तुरंत अवगत कराना ब्रह्मचारी।
1: जो आदेश।
0: और हाँ, श्रेष्ठीवर नागदत्त को हमारा अभिवादन कहना।
1: महादेवी।
0: वैसिका, ब्रह्मचारी का सत्कार करो।
1: कहाँ गए होंगे राजा भर्तृहरि? अवश्य सकुशल होंगे, हम सबका मन भी यही कहता है।
0: तुम्हारी वाणी सत्य हो ब्रह्मचारी।

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का छठा भाग सुन रहे थे।

रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक अनुराधा चतुर्वेदी, पिंगला कंचन राजानी, चंद्रसेन बद्रवास्ती, गोप विवेक मृदुल, महामात्य अरशद इकबाल, महस्पद नजीर कुरैशी, नायक विक्रांत निम्बोरे, संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको ज्ञात ही है कि चंद्रसेन इन दिनों अवंती में है। चंद्रसेन की बातों से महारानी पिंगला की अनुचरी वैसिका अत्यंत प्रभावित होती है। चंद्रसेन देवी वसुंधरा के नाम आचार्य नागदत्त का पत्र देने उनके आवास जाते हैं। अगले भाग में हम देवी वसुंधरा के व्यक्तित्व से परिचय प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की छठवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मैसेडोनिया में हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार महानाट्य में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के पांचवें दिन 1300 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और 9 लाख से अधिक नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम नगर निगम के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। और प्रदेश भर में आज बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कल देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, मुरैना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभिन्न जिलों में भी बारिश का दौर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

कार्यक्रम महिला सभा लेकर हाजिर हूँ आपकी सगी सोनल जौरे। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी और साथ ही सुनाऊंगी आपके पसंदीदा गीत भी। सखियों, आज मैं आपसे बात करूंगी किताबों के महत्व को लेकर, क्योंकि किताबें ही हैं जो हमारी सबसे सच्ची दोस्त होती हैं, है ना। कितनी बातें हैं जो इन किताबों में हमें पढ़ने को मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो किताबों से ज़्यादा समय तो हम मोबाइल में बिता देते हैं, लेकिन जो मज़ा किताबों

को पढ़कर आता है ना, वो मजा कहीं और नहीं मिलता। किताबों से कई ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती है और कई प्रेरणादायक कहानियों से हमें अपनी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। हालांकि हमने तो किताबें खूब पढ़ी है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे बच्चे किताबें पढ़ने में कितनी रुचि रखते हैं? तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, बहुत कम, क्योंकि कई बच्चे तो मोबाइल में ही अपनी पढ़ाई करते हैं और मोबाइल में ही उनका अधिकांश समय निकल जाता है। इसका कारण है कि हम खुद किताबें नहीं पढ़ते और पूरा दिन मोबाइल में वीडियो देखना, मैसेज पढ़ना और भेजना, इन सब में लगा देते हैं। तो बच्चे हमें देखकर क्या सीखेंगे? तो बच्चों में यदि किताब पढ़ने की आदत विकसित करनी है ना सखियो, तो सबसे पहले हमें किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात कि बच्चों के साथ आप रोज 15 से 20 मिनट बैठें और उनके साथ किताबें पढ़ें और कुछ प्रेरणादायक कहानियां उन्हें सुनाएं और उनसे भी पढ़वाएं किताबें। और यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चित्र वाली किताबें खरीदें, जिससे उन्हें चित्र देखकर किताब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। बस देखना, बच्चों में पढ़ने की आदत धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। लेकिन आप उनके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक किताबें जरूर लाएं, इससे उन्हें पढ़ने में रुचि भी आएगी और मजा भी आएगा।

अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार मुफ्त प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। इसमें 12वीं पास, 10वीं पास और ड्रॉप आउट युवा भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और स्किल कार्ड दिया जाता है। साथ ही 8,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी मिलती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए pmkvyofficial.org पर जा सकते हैं और यहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। आप इसमें कोर्स की लिस्ट देख सकते हैं और सर्टिफिकेट्स की जानकारी भी ले सकते हैं। और सखियों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब चलते हैं हमारे अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर, जिसमें आज हम सुनेंगे क्ले मिट्टी से ज्वेलरी बनाने में माहिर नेहा अग्रवाल को। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सगियो, हम सभी में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है और हम इस हुनर का उपयोग कर बहुत कुछ कर सकती हैं। हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नेहा अग्रवाल जी ने, जो कि हुनर रखती हैं क्ले मिट्टी से बनाई गई ज्वेलरी का, और भी बहुत कुछ बनाती हैं वो। तो आइए बात करते हैं आज उन्हीं से हमारे मेरी उड़ान कार्यक्रम में। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरी उड़ान कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नेहा जी, ये बताइए कि आपने कब सोचा, कब आपके दिमाग में ये बात आई कि आप क्ले मिट्टी से ज्वेलरी भी बना सकती हैं और कई चीजें बना सकती हैं?
3: सबसे पहला थॉट तो तब आया जब मुझे फाइनली लगा कि मैं अपनी फैमिली और बिजनेस में दोनों में एक बैलेंस बना सकती हूँ। तब मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना बिजनेस सेटअप करूं। उसके बाद जब मैंने क्ले की ज्वेलरी का एक इंटरनेट पे वीडियो देखा था, तब मुझे लगा कि ये कुछ नया है और मुझे स्टार्ट करना चाहिए।
2: क्या बात है नेहा जी, और क्या क्या चीजें बना लेती हैं आप क्ले से?
3: क्ले से ज्वेलरी के अलावा फ्लावर पॉट हो गया, वॉल हैंगिंग्स हो गया, ट्रेज हो गया। और क्ले से सिर्फ इनोवेशन की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है। इससे आप कुछ भी बना सकती हैं। क्ले इतनी बड़ी चीज है कि आप सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाएं ना, आप बहुत कुछ बना सकती हैं उससे।
2: क्ले से हम ज्वेलरी मेकिंग पहली बार सुन रहे हैं, तो आपने ये चीज देखकर सीखी या आपने खुद से बनाया?
3: मैंने सबसे पहले पेपर क्विलिंग की ज्वेलरी देखी थी, उससे मुझे आइडिया आया कि हम क्ले की भी बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक फैब्रिक ज्वेलरी का भी देखा है। तो मुझे लगता है सिर्फ क्ले से ही नहीं, हम पेपर क्विलिंग, हम फैब्रिक ज्वेलरी, बस क्रिएटिविटी की एक चीज होती है कि हम में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्ले का हमने जब देखा था फर्स्ट वीडियो, तब मुझे लगा कि बहुत सुंदर ज्वेलरी हम बना सकते हैं क्ले से। तब एक थॉट आया कि नहीं, क्ले से। उसके बाद मैंने फिर फैब्रिक ज्वेलरी और पेपर कुलिंग ज्वेलरी भी बनाई है, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है और बहुत ही अच्छा पसंद कर रहे हैं सब।
2: वाह, क्या बात है नेहा जी। मैं भी अभी देख रही हूँ आपकी ज्वेलरीज वगैरह और ये जो चीजें

0: आपने बनाई है, वाकई मुझे भी मजा आ गया देखकर। और कब से कर रही हैं आप ये काम?
1: मुझे ये काम करते हुए साल दो साल हो गए हैं करीबन। पर सबसे पहला थॉट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, और तब से आज तक मेरी गाड़ी कभी पीछे नहीं गई है। सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो बोल सकते हैं वो मेरे हस्बैंड का है इसे चालू करवाने के लिए। एंड इट्स नाउ 2 ईयर्स जब मेरा बिजनेस सेटअप हो चुका है।
0: मतलब कि आपके जो हस्बैंड है उन्होंने ही आपको प्रेरित किया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए?
1: मेरे हस्बैंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है मेरी लाइफ में। मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छाइयाँ जो भी है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड इतने मोटिवेट करते हैं मुझे। मेरे बिजनेस के लिए भी सबसे पहला वो ही इंसान था जिसने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इसे ज़रूर चालू करना चाहिए।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी भी है कि हमारे हस्बैंड अगर हमें सपोर्ट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या किसी और ने भी आपको इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है?
1: पूरी फैमिली का सपोर्ट एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे स्पेशली बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, दे आर द सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि मैं जब कोई काम करती हूँ दे आर लाइक मम्मा ठीक है, मतलब आप करिए, हम इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, हम अपनी पढ़ाई। सो एवरी ईच एंड एवरीबॉडी इन द फैमिली सब इम्पॉर्टेंट होते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, एक फैमिली का बैलेंस बनाने में। सो मैं बोलूंगी मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट जिन्होंने मुझे इनकरेज किया।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताएं कि जो क्ले से बनाई हुई चीजें, जैसे आप ज्वेलरी बनाती हैं और भी कई चीजें जो आपने हमें बताई हैं, तो क्या लोग पसंद करते हैं और कितनी मांग है इन चीजों की?
1: क्ले की ज्वेलरी एंड स्पेशली जो पेपर क्विलिंग क्ले ज्वेलरी है लोग बहुत ज्यादा, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं। मैंने अभी एक एग्जीबिशन किया था, मतलब पीपल आर लाइक क्रेजी। आप सिर्फ एक इनोवेशन डालिए उसमें और सिंपल ज्वेलरी भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब इसकी इतनी डिमांड है कि सिर्फ आपको बनाना और आपको सही जगह उसे प्लेस करके और सेल करना आना चाहिए।
0: अपने काम की शुरुआत करने में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत का सामना तो करना पड़ा होगा?
1: शुरू में जरूर थोड़ा हेजिटेशन होता है क्योंकि मार्केट में जाना, हम लोग क्योंकि कहीं गए हुए नहीं होते हैं तो शुरू में हमें कहीं जाना और स्टार्ट करना थोड़ा सा जरूर लगता है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए तो सारी मुश्किलें पार होती जाती है। मुझे भी पहली बार जब मैं मार्केट में निकली मुझे लगा अरे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे 2 सालों में मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नाउ आई कैन डू एनीथिंग। और इसीलिए मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया इसी के साथ, और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते ही मैंने आज अपने 5 ग्रुप्स में कंडक्ट कर रही हूँ। एंड मैंने इस क्ले ज्वेलरी के साथ साथ मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी हूँ और वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो मैं सबसे कहना चाहूंगी प्लीज आप स्टार्ट करिए। शुरू में जरूर कुछ दिक्कतें आएगी लेकिन आपका खुद का उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो प्लीज कुछ ना कुछ जरूर कीजिए लाइफ में।
0: सखियों, मन की अभिव्यक्ति को उभार कर उसे सुंदर रूप में दिखाना ही कला है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो नाटक, चाहे वो गायकी या चाहे वो चित्रकला हो। और इसके अलावा भी कई प्रकार की कलाएं हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं। तो बस सखियों, उन्हें हमें उभारना है और बाहर लाना है। अपने अंदर की कला को कभी दबने ना दें, उसे बाहर लाएं और उस कला का उपयोग करें, देखना आपको खुशी जरूर मिलेगी। नेहा जी, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की और विषय से संबंधित इतनी बढ़िया जानकारी दी हमारी सखियों को। आशा कर दें कि हमारी सखियां भी बहुत कुछ सीखेंगी आपसे, और अगर वो घरेलू महिलाएं हैं घर पर बैठकर ही वो बहुत कुछ सीखेंगी। धन्यवाद आपका हमारी मेरी उड़ान कार्यक्रम में।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियो, अभी आप सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान में क्ले मिट्टी से ज्वेलरी बनाने में माहिर नेहा अग्रवाल को, और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और बढ़ते हैं अगले क्रम रूपलावण्य की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि बारिश में फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो बारिश का मौसम होता तो बहुत खूबसूरत है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी हैं, जैसे कि इस नमी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन घबराना नहीं है सखियों, कुछ जरूरी टिप्स आप अपना कर सेफ रह सकती हैं। जैसे कि इस दौरान यदि आप गीले हो जाएं बारिश में तो तुरंत कपड़े बदलें और बॉडी को टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लें, और खास तौर से पैरों की जो उंगलियां होती हैं वहां इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो वहां अच्छे से पोंछें। इस दौरान ढीले और कॉटन के कपड़े पहने, टाइट जींस या सिंथेटिक कपड़े ये पसीने को रोकते हैं जिससे फंगस बढ़ता है। तो रोज साफ कपड़े बदले और ढीले कपड़े पहने। पैरों में हम जूता मोजा जो भी पहनते हैं तो उसके कारण क्या होता है, पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो यदि आप बाहर से आ रहे हैं मोजे निकाल कर पैरों पर हवा लगने दें। इस दौरान एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद बॉडी ड्राई जरूर रखें। तो याद रखिए सखियों, सफाई ही बचाव है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और सखियों अब बात कर लेते हैं फूड जोन की, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिस्पी कॉर्न वेजिटेबल फ्रिटर्स की रेसिपी। तो बारिश की चाय के साथ ये परफेक्ट कुरकुरा नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो जल्दी से सामग्री नोट कर लीजिए। स्वीट कॉर्न

1 कप, कटी सब्जियां 1 कप, प्याज आधा कप, हरी मिर्च 2, अदरक लहसुन पेस्ट 1 छोटा चम्मच, बेसन आधा कप, चावल आटा 3 बड़ा चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 बड़ा चम्मच, मसाले आप ले लें जैसे लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हरा धनिया और तेल तलने के लिए। अब मैं आपको विधि बता देती हूँ। विधि बड़ी आसान है। कॉर्न 2 से 3 मिनट उबालकर दरदरा क्रश करें और बाउल में कॉर्न, सब्जियाँ, प्याज, सारे मसाले और सारे आटे अच्छी तरह से मिला लें और पानी कम डालें। गरम तेल में छोटे पकोड़े बनाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। चाट मसाला इन पर छिड़क कर हरी चटनी के साथ परोसे गर्मा गर्म। तो देखिए कितना पसंद आने वाला है आपको, है ना? तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा सखियों। फिलहाल सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में डिसीजन हर मुश्किल को आसानी पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-422-2233 पर कॉल करें।
3: एनसीईआरटी का आयोजित कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर, डायरेक्ट टू होम डीटीएच।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सुनिए अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल कहीं भी कभी भी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे प्रीति भार्गव और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

प्रीति भार्गव और साथियों के गाए इस मालवी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एक सूचना है आपके लिए, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। ये प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पलाशी शर्मा की गई चंद गजलें। आगाज कर रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र के इस कलाम के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। किशोर कुमार का गाया फिल्म अजनबी का ये गीत है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा, धुन बनाई आर डी बर्मन ने।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था, एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म थी एक दूजे के लिए, इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश की चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए की बैठक के बाद ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र को लेकर एनडीए सांसदों से सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। इस बारे में केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बताया,
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने यूसीसी विधेयक पर चर्चा कराई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये जनता के सुझावों पर आधारित विधेयक है जिस पर करीब 10 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी कांग्रेस ने यूसीसी के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्री टंडन का जीवन सादगी, सेवा और संगठन के मूल्यों से भरा हुआ था, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज के प्रति श्री टंडन का समर्पण हमेशा जनसेवा के मार्ग पर मार्गदर्शन करता रहेगा। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय भविष्य की तकनीक और उन्नत पदार्थ विज्ञान है, जिसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल विज्ञान पर विशेषज्ञ व्याख्यान होंगे। प्रतिभागियों को IIT इंदौर की प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कराया जाएगा। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन हुआ है। यहां 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यह प्रमाण पत्र पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को सौंपा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, सीहोर और रायसेन में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। नीमच, मंदसौर और रतलाम में फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है। भोपाल में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। कार्यशाला में नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर राजेश चंद्र सहित कई विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। भोपाल में जल्द ही इलेक्ट्रिक ई बस सेवा शुरू होने जा रही है। कल से PM ई बस सेवा के तहत बसों का ट्रायल रन शुरू हुआ, जो 5 दिनों तक चलेगा। इस दौरान बसों में आम यात्रियों को सफर की अनुमति नहीं होगी। ट्रायल सफल रहने पर अगस्त से इनका नियमित संचालन शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। आगरमालवा कलेक्टर ने सभी विभागों के कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक जनजागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 को इंदौर में ऐतिहासिक जनसहभागिता मिली है। और सावन माह के दौरान मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। वहीं सोमवार, हरियाली अमावस्या और नागपंचमी पर गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं।

0: दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
7: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहली फरमाइश शामिल कर रहे हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिस अरसलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज बिटिया रोजमीन और तैमूर तड़वी की और साथ ही तड़वी परिवार के सदस्य, विजय चौक इंद्राना से आजाद प्रसाद सोनी, अनमोल सोनी, अभिषेक चिनी, अमन सोनी, अक्षित सोनी, पार्थ सोनी और अंकिता, ज्योति और छाया सोनी की। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की। आए दिन बहार के फिल्म का गीत आशा भोसले ने गाया है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

कार्यक्रम में ये अगला गीत सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाता पारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तन्नु करमरकर। और ये चिट्ठी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की। सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, गुलजार ने बोल लिखे और खयाम की तर्ज है। इसी गीत को सुनना पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बीबी आरजू जाजोरिया ने।

इसी गीत को सुनना पसंद किया था राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर ने, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी ने। अगला फरमाइशी गीत ये है, फरमाइश करताओं के नाम बताएंगे इस गीत के बाद।

बरसात की एक रात फिल्म का यह गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। आनंद बख्शी की शब्द रचना थी और संगीत रचना आर डी बर्मन की। सुनना पसंद किया था छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप केशव पटेल, राम निवास अग्रवाल ने। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती साविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार ये हमें भेजते हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने। ये मिली जुली फरमाइशकर्ताओं के नाम है अगले गीत के साथ वालों के लिए भी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, वैशाली गवहाणकर, श्वेता, सुमित गवहाणकर और कुमाली ध्वनि गवहाणकर परी की। बिलहरी बड़खेड़ा से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, प्रश्न यादव, शेरब मुनीर, ग्राम पहरुआ से ग्राम राम कुमार लोधी ने। अग्निपथ फिल्म का गीत एसपी वाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने गाया है। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

फिल्म अग्निपथ के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। एक सूचना है आपके लिए, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी

0: होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का भी प्रसारण नहीं किया जाएगा। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश की चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए की बैठक के बाद ये जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने यूसीसी विधेयक पर चर्चा कराई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्री टंडन का जीवन सादगी, सेवा और संगठन के मूल्यों से भरा हुआ था, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीक और उन्नत पदार्थ विज्ञान है। भोपाल में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन हुआ है। यहाँ 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। और प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। दिल्ली से विधानसभा समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:00 करेंगे। नहीं, इसे पुनः सुन लें। संसद समीक्षा रात्रि 8:00 दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। विधानसभा समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:30 पर करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 पर। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में महफिले समा का प्रसारण रात्रि 9:30 पर करेंगे। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 8:00 संसद समीक्षा का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण होगा और विधानसभा समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:30 पर करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में संतरे की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं बाहर नियंत्रण विषय पर डॉक्टर लाल सिंह से ली गई भेंटवार्ता हम प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा के प्रसारण के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने को है। हमारा ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे प्रीति भार्गव और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की।

प्रीति भार्गव और साथियों के गाए मालवी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए आपकी नजर है पलाशी शर्मा की गाई चंद गजलें। आगाज कर रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र के इस कलाम के साथ।

अंजुम के इस कलाम के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज आप सुन रहे थे पलाशी शर्मा की गई चंद गजलें। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में कौसर मुनीर का लिखा यह गीत है। महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण ने गाया फिल्म टशन के लिए।

विवाह फिल्म का ये गीत है, उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने गाए हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

संजीव कोहली मदन मोहन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत सुनिए। लता मंगेशकर रूप कुमार राठौड़ ने गाया है। फिल्म का नाम वीर जारा।

0: रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गीत था, सुखविंदर सिंह ने इसे गाया था, जयदीप साहनी ने बोल लिखे थे और सलीम सुलेमान ने संगीत दिया था।
1: तुम किसन हो मैं हूँ राधा। तुम
0: सोनू निगम और सुनिधि चौहान का गाया फिल्म संजू से ये गीत है। पुनीत शर्मा ने गीत लिखा, रोहन ने इसका संगीत बनाया है।

सलाम नमस्ते के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे के बाद दोनों सदनों की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 के पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल भी पूछा। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीक और उन्नत पदार्थ विज्ञान है। भोपाल में भी आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन किया गया है। यहां 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के HS प्रणॉय का अभियान पहले दौर में ही समाप्त हो गया। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष सेट्टी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शब्द सागर कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा। विषय है हिंदी में आत्मकथा लेखन। प्रतिभागी हैं शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आत्मकथा लेखन के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आपके सामने हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार श्री रमाकांत श्रीवास्तव और उतने ही वरिष्ठ कथाकार श्री शशांक। शशांक जी और रमाकांत जी, हिंदी में आत्मकथाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत पुरानी एक आत्मकथा याद आती है, बल्कि आज तक जो प्रसिद्ध है, और वो मूलतः हिंदी में नहीं लिखी गई, गुजराती में लिखी गई, महात्मा गांधी की आत्मकथा, जिसको उन्होंने सत्य के प्रयोग शीर्षक उपशीर्षक दिया था। सत्य के प्रयोग शीर्षक देने के पीछे गांधी जी की जो भी मंशा रही हो, वो उनकी आत्मकथा को पढ़कर और स्पष्ट होते जाता है। लेकिन क्या आत्मकथा में झूठ भी लिखा जाता है? एक प्रश्न तो ये है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हिंदी में कहानियाँ, उपन्यास और किसी भी भाषा में लिखे ही जाते हैं गद्य में, फिर आत्मकथाओं की ज़रूरत क्यों होती है? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि इधर जो आत्मकथाओं का एक नया दौर शुरू हुआ है, तो इससे क्या साहित्य की श्रीवृद्धि होती है और किस तरह से ये आत्मकथाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती जाती हैं? मैं रमाकांत जी से जानना चाहूँगा कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं।
2: राजन, जहाँ तक सवाल है कि आत्मकथा में क्या झूठ लिखा जाता है, लिखा जाता तो मैं नहीं कहूँगा, लिखा जा सकता है, अगर कोई झूठ लिखना चाहे तो कौन रोक लेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे सामने विश्व की अन्य भाषाओं में, भारत की अन्य भाषाओं में और फिर हिंदी में भी जो भी आत्मकथाएं आई हैं, उनमें कई आत्मकथाएं ऐसी हैं जो हमें उस समय की, मतलब पूरे परिदृश्य को सामने रखने की कोशिश लेखक के द्वारा की गई है, ऐसी आत्मकथाएं हैं। अगर हम हिंदी में आत्मकथाओं के दौर की बात करें तो पहले तो सबसे पहले जो नाम याद आता है लोगों को कि बच्चन ने जब आत्मकथा लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई और अमूमन लोग उसके पहले झांक कर नहीं देखते। लेकिन बच्चन जी की उस आत्मकथा के पहले भी हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी गई हैं। हम राहुल जी को ना भूलें, मेरी जीवन यात्रा, और बहुत महत्वपूर्ण उसमें सूचनाएं हैं, पूरा काल उस वक्त का उभर कर सामने आता है। उग्र जी की आत्मकथा अपनी खबर जी, ये एक हिंदी में एक विशिष्ट आत्मकथा इसे मानता हूँ। श्याम सुंदर दास ने भी लिखी, लेकिन मुझे याद नहीं है उसका नाम। तो बच्चन जी के पहले भी आत्मकथाएं लिखी गईं और फिर रांगे राघव हैं, अभी अभी मिथिलेश्वर की आत्मकथा आई हुई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आत्मकथाओं में नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो आत्मकथा है, मैं समझता हूँ कि सच बोलने का एक दावा लेखक उसमें निश्चित रूप से कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि शशांक जी सहमत होंगे इस बात से।
1: शशांक जी, मैं एक बात में जोड़ना चाहूँगा कि अभी बच्चन जी की आत्मकथा का जिक्र रमाकांत जी ने किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर और दश द्वार से सोपान तक, एक क्रम है। लेकिन बच्चन जी के जीवित रहते ही, और बच्चन जी ने चूंकि अपने ही जीवन के बारे में लिखा और उनका बहुत से लोगों से इंटरेक्शन भी है और उसके बारे में उन्होंने लिखा, तो बच्चन जी की आत्मकथा बच्चन जी के रहते ही विवादास्पद भी हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि ये घटनाएं इस तरह की नहीं हैं जैसी बच्चन जी ने लिखी हैं। तो मैं इस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आत्मकथा इतिहास नहीं होती, वो थोड़ा आत्म विवरण भी होती है और आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार की भी एक चीज होती है। तो जो अनुभव और जो साक्षात्कार उन परिस्थितियों में उन घटनाओं से बच्चन जी को हुए, हो सकता है कि वो सामने किसी अन्य को पता ना हो। इसी से सवाल उठता है कि क्या उन्हीं घटनाओं को आत्मकथा में हम औपन्यासिकता की दृष्टि से भी परख सकते हैं।
3: देखिए राजन जी, आपने गांधी जी के सत्य के प्रयोग की बात कही थी। गांधी जी ने शुरुआत में ही सत्य के प्रयोग में ये कहा कि मेरे समान अनेकों का जय चाहे हो पर सत्य की जय हो। आत्मा को नापने के लिए सत्य का गज कभी छोटा ना बने। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उस गज का इस्तेमाल किया है जो आत्मा को छोटा ना बनने दे। यह सच की उनकी अपनी परिभाषा थी। मगर जब हमारे यहाँ, जब हम अपनी हिंदी की आत्मकथाओं की बात करते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी अनुवाद में बहुत सारी रचनाएं आती हैं। हेलन केलर की हमारे यहाँ सबसे बड़ी आत्मकथा चली, खुद गांधी जी की आत्मकथा हुई, अनेकों अनुवाद हमारे यहाँ बंगला से, मराठी से
2: शानदार आत्मकथा
3: जी हाँ। मगर हमारे यहाँ कम लिखे जाने की आत्मकथाओं की यदि आप देखें तो उसकी मात्रा, उसका परिमाण जो है वो कम होता है। इसके कारणों पे जाना चाहिए
1: हाँ।
3: और उन कारणों पर यदि हम जाएं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेमचंद उस बारे में क्या कहते हैं। दरअसल सब लोग चाहते थे कि प्रेमचंद जो बहुत ज़्यादा लिखते थे कि वो कुछ ना कुछ तो आत्मकथाओं के बारे में दृष्टिपात करते, प्रयत्न करते। यह हमारी बातचीत के लिए एक सूत्र वाक्य हो सकता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गढ़े तो हैं पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। दरअसल हमारे अंदर एक बात ये रहती है कि हम जब किसी के जीवन में झांकें तो उसमें उसके ऐसे प्रसंग मिलें जो बहुत निजी हों। मैं मार्क्वेज के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हर व्यक्ति का जीवन तीन तरह से होता है। एक होता है पब्लिक यानी सार्वजनिक जीवन होता है, दूसरा होता है प्राइवेट यानी व्यक्तिगत जीवन होता है, और तीसरा होता है सीक्रेट जीवन, वह जीवन जो आपके परिवार को भी नहीं मालूम होता। दरअसल जो आप किसी को नहीं बताते वह सीक्रेट जीवन के लिए एक पाठक आवागमन का प्रयत्नशील होता है, और इसके लिए किसमें कितनी हिम्मत है ये देखने की बात है। मैं चाहूँगा ये बताना कि उग्र ने जो अपनी खबर लिखा वह मैं समझता हूँ कि आत्मकथा की शुरुआत होती है
1: हाँ,
3: और उसमें यदि आप शुरुआत से ही उसे देखें

0: तो उनने लगभग आधा, बहुत छोटी सी किताब है वो आत्मकथा, बहुत बड़ी नहीं है, मगर वो कैसे उनके बदचलन भाइयों ने उनको बदचलन बनाया, कैसे रामलीला में काम करने वाले लोग बदमाश होते हैं और उनका जीवन बर्बाद किया। मगर एक खूबसूरती है कि वहाँ से एक लड़का 19-20 साल का निकलता है और पराड़ कर उनकी रचनाओं को ठीक करके और उस में देते हैं,
1: आज
0: में देते हैं। और आप देखेंगे कि अंत में जाकर निराला से बातचीत होती है मतवाला के ऑफिस में, तो वो किसी से मारपीट तक करते हैं एक प्रकाशक से, और उसके लिए सेठ से, जो मतवाला के
1: महादेव भाई
0: जी, तो सेठ जी से वो ये कहते हैं उग्र कि निराला ही नहीं, क्योंकि निराला को निकाल दिया गया, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तब निराला ने कहा कि यहाँ केवल एक ही मर्द है, वो उग्र जी है। तो आत्मकथा आपको ये बतलाती है, जो संभवतः आपके जीवन का, साहित्य का एक इतिहास आपको देती है। मगर इस बात को हम लोग आगे करेंगे और इस बात पे देखेंगे, मगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजेंद्र जी, कि राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, हर लेखक जब अपना आत्मकथा लिखता है तो उसके टारगेट भी होते हैं, उसमें राजेंद्र यादव के टारगेट थे, उसमें एक खास किस्म का रस और लास्य दिखाने की प्रयत्न भी रहे रमाकांत जी। मगर जब मन्नू भंडारी ये कहती हैं कि मुझे, उन्होंने फिर एक कहानी यह भी कर आत्मकथा लिखी, और यहाँ इस बात के लिए समीचीन होगा जब उन्होंने कहा कि यह जो एक कहानी यह भी है, वह लोकप्रिय लेखकीय कथा यात्रा और आत्मकथा का घाल मेल है। और मुझे ये इसलिए करना पड़ा कि राजेंद्र यादव ने स्त्री प्रसंगों को एक तरफा लिखा है और मैं दूसरा सच भी पेश करना चाहती
1: हूँ। हाँ नहीं, मैं शशांक आपकी बात से एक दिलचस्प बात मुझे याद आई। हेमिंग्वे ने अपने किसी साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि आप आत्मकथा कभी लिखेंगे, क्योंकि हेमिंग्वे का जीवन बहुत उबड़ खाबड़ था और उसमें कई घटनाएं हैं, लेकिन हेमिंग्वे ने फौरन कहा, और वो वाक्य मुझे अभी तक याद है, उसमें हेमिंग्वे ने कहा, ना बाबा ना, आत्मकथा यानी झूठ का पुलिंदा।
0: ये बड़ी आश्चर्य की बात है राजन जी, कि हेमिंग्वे ने आत्महत्या क्यों की, इसलिए कि उनको लगा कि उनका पौरुष उनके जीवन में और उनके साहित्य में चुक गया है। ऐसे बहुत कम लेखक होंगे जिसे वो एक अपनी मर्दानगी को और अपने लेखकी मर्दानगी को अपने जीवन के लिए चुनौती मानते हैं।
2: एक बात ये है राजेंद्र जी, जो शशांक कह रहे थे उस बात को मैं थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है ये अभी तक भी एक ऐसा बंद समाज है जहाँ बहुत खुल कर बातचीत करना आज भी खतरे से खाली नहीं है। हमें याद है कि जब एक हमारे बड़े पत्रकार ने अपने अनुभव जीवन के, जो बस्तर में रहते हुए उन्हें प्राप्त हुए, वो लिखे तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमारा समाज आज भी बहुत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रेमचंद ने तो आत्मकथा विशेषांक भी निकाला। प्रसाद जी से जब उन्होंने कहा तो उनकी, प्रसाद जी ने कविता लिख के भेजी अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी आत्मकथा, सुनकर तुम क्या करोगे मेरी भूली आत्मव्यथा, ऐसा कुछ है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण है हमारे समाज में कि आत्मकथाओं का लेखन तब ज़्यादा शुरू हुआ जब मराठी के कलम से प्रभावित होकर हमारे यहाँ भी विमर्श शुरू हुआ, और साथ ही स्त्री का जो सशक्तिकरण हुआ, औरत में जब ये हिम्मत आई, या ये जब साहित्य में प्रचलित हुआ कि स्त्री अपनी व्यथा को स्वयं कहे, सहानुभूति का साहित्य नहीं चाहिए, स्वानुभूति का साहित्य चाहिए, तब हम देखते हैं कि जूठन जैसी आत्मकथा आई,
1: अद्भुत है,
2: वाल्मीकि की, मेरा बचपन मेरे कंधे पर, शिवराज सिंह की आई, और मैं समझता हूँ मुर्दहिया, ये तो अपने आप में अपूर्व है। स्त्रियों ने जब लिखा, अपने विषय में लिखा, कुछ तो ऐसी किताबें हैं जिनके नाम मैं भी भूल गया हूँ और अक्सर याद नहीं किया जाता, चंद्रकिरण सोनरेखा, मन्नू भंडारी का तो बताया आपने, मैत्रेयी पुष्पा की किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई, गुड़िया भीतर
1: गुड़िया।

0: क्या है कि स्त्रियों ने जब अपने विषय में लिखना शुरू किया तो उन्होंने भी कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर के भय और संशय को थोड़ा बढ़ा कर लिखा, और उसकी वजह यह है कि हमारे समाज में उस तरह का भय उनके अंदर मौजूद था। तो स्त्रियों ने जो लेखन किया उसमें मैं एक दूसरा वर्ग शशांक की करता हूँ, देखिए आप उससे सहमत हो ना हो। हम अक्सर लेखकों की, साहित्यकारों की आत्मकथाओं की बातचीत करते हैं। अभी शुरू में जो आलू आधारी की बात आपने की, एक बर्तन मलने वाली लड़की बचपन में जिसकी शादी कर दी गई, उसके अंदर जब पढ़ने की इच्छा जागृत हुई तो प्रबोध कुमार जी ने मतलब उसकी तरफ से लिखा, बंगला में उसका वर्षन बाद में आया है। इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है अशोक सेक्सरिया की, ड्राइवर की पत्नी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। वो पढ़ना नहीं जानती थी, अशोक सेक्सरिया जी ने उनको प्रेरित किया कि आप पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके पति ने भी उसको प्रोत्साहित किया और वो आत्मकथा उन्होंने लिखी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आत्मकथाओं का भी एक संसार है जिस पर हम फिर और बातचीत कर लेंगे।
1: रमाकांत जी, ऐसा है कि आत्मकथाओं के बारे में साहित्यकारों की बहुत अच्छी राय नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोविंद मिश्र आत्मकथाओं के बारे में क्या कहते हैं, और संभवतया ये लगभग बहुत सारे लेखकों के लिए भी ये संभव हो सकता है। मैंने प्रेमचंद के बारे में आपको बताया कि यदि जीवन में संघर्ष एक उबड़ खाबड़ नहीं हो तो वो आत्मकथा का आनंद नहीं होता, मगर यदि गोविंद मिश्र यदि ये कहें कि साहित्यकार इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि उनके उतार पर, उनकी विशेष विधाओं में लिखना कम होता चला जाता है। जब उतार आपका जब होने लगता है और उसमें जिसमें आपको महारत हासिल थी, और तब आप सीधे सीधे अपनी कहानी लिखते चले जाते हैं, आत्मकथा लिखते हैं और साहित्यकार होने का भ्रम बनाए रखते हैं।
0: आप इससे सहमत हैं क्या?
1: मैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ठीक बात है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप लेखक हैं शुरुआती दौर में, केवल एक सहमत असहमत की बात इसमें नहीं है, इसमें वह चीज़ देखनी होगी कि आखिर आप चाहते क्या हैं एक पाठक के रूप में, और लेखक क्या दे रहा है। तब ये लेखक का यह एक जो वर्जन है, यह जो एक उनकी तरफ से दी गई एक दलील है, ये भी गलत नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर भीमबेटका है, वहाँ हजारों साल पहले लोगों ने अपने चित्रों से अपने जीवन की आत्मकथा रेखा चित्रों से पेश की। और उसके बाद यदि आप कहें तो मैं जगदलपुर में रहा हूँ, और उस जगदलपुर में आदिवासी अपनी मृत्यु के बाद कब्र पर एक सागौन का एक 6 फीट का लगा देते हैं स्तंभ, सर्कल उसे वे लोग कहते हैं, और उसमें देखिए तो बड़ा आनंद आपको आएगा कि उसमें काला चश्मा, छतरी, एक शेर, या उसने जीवन में जो भी कुछ किया है वह उस पे आकृतियों में दिया है। जिनके पास भाषा नहीं होती तो वे आकृतियों से अपनी बात करते हैं। हमारे पास भाषा है मगर हम अपनी भाषा में ही अपनी चीज़ों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा, ये पूरे विश्व साहित्य में कहा गया कि फ्रेंच महिलाएँ सबसे ज़्यादा आत्मकथाएँ लिखती हैं। एक ना एक आत्मकथा फ्रेंच महिला लिखती है, और अनेकों फ्रेंच महिलाओं की कथाएं छपती हैं जो आत्मकथा की हैं। मगर जो हमारे यहाँ लेखक या लेखिकाएं लिखते हैं, मैं उसमें एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमारे साहित्य में हमेशा कोई ना कोई एक विचार साहित्य के लिए प्रेरणा और स्तंभ के रूप में होता है। स्वतंत्रता के पहले का आप देख लीजिए तो आज़ादी, गांधीवाद, मार्क्सवाद, फिर फ्राइडियन, इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा। मत जैसे ही ग्लासनोस की समाप्ति के बाद, खुलेपन के बाद, आपके पास जब मार्क्स की विचारधारा नहीं रही खासतौर पर साहित्य में, तो महिला विमर्श जरूरत से ज़्यादा बढ़ा है। आप देखिए हर साहित्यिक पत्रिका के आपको अंक इसी पर ही मिलेंगे। और इससे हुआ ये है कि यदि एक स्त्री को पुरुष से अलग हटना है तो उसे पुरुष के कहीं ना कहीं उन सारे विचारों के बरक्स प्रतिरोध में खड़े होना है। हर समय थोड़ी प्रतिरोध होता है, है ना? और इसलिए यदि आप देखें तो प्रभा खेदान की अन्या से अनन्या, वह किताब लोगों के बीच में क्या हुई। उसमें जो जो उनके पुरुष प्रसंग थे या खुद मनु भंडारी की आत्मकथा के बारे में भी है कि यदि आपको चीज़ रुचती नहीं है तो क्या आप उसमें फ़ायदे के लिए लगी रहीं या आप उसके प्रतिरोध में बाद में क्यों आईं, यह एक प्रश्न आता है। और फिर यहाँ हम जाते हैं राजेंद्र जी की बात पर कि जहाँ पर आप किसी चीज़ में संतुलन नहीं है, आप किसी से पक्षपात पूर्ण विचार रखते हैं, तो वह आत्मकथा को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता।
0: आपकी इस वो एक कृति से की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अनन्या से अनन्या को पढ़ते वक्त लगातार मुझे ये लगता रहा कि क्या हम अपनी ही गलतियों को और ग्लोरीफाई करें, ऐसा तो नहीं है कहीं उस आत्मकथा में, जो कि मुझे बार बार लगता था। मैं राजेंद्र जी एक ये बात कहना चाहता हूँ कि साहित्यकारों से अलग हटके जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं उससे हमारे संसार के बहुत से कोने उजागर होते हैं
1: जी।
0: कुछ किताबें जो मैंने देखी हैं उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे पत्रकार है, वो अपने ढंग से दुनिया को देखता है। यही मायाराम जी ने जो आत्मकथा लिखी धूप छाया के दिन, कांति कुमार जैन ने जो लिखा बैकुंठपुर से मैं बचपन, अभी एक आत्मकथा मैंने पढ़ी इंदिरा मिश्रा मेरे जीवन का प्रशासनिक काल, तो वो एक अपने ढंग की एक सूचनाओं से हमें वाकिफ कराता है। लीना महंदेले की किताब आई है एक मेरी प्रांत साहबी के दिन, बलराज साहनी की आत्मकथा को जैसे हम याद करें, एक फिल्मी दुनिया का एक पूरा
2: मेरी फिल्मी
0: जो वातावरण है, मेरी फिल्मी आत्मकथा ही नाम रखा उस उन्होंने। एक वैज्ञानिक हैं जानते होंगे डॉक्टर आत्माराम, उन्होंने आत्मकथा लिखी अपने क्षेत्र के एक सामान्य लेखक जिन्हें हम बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते, संतोष खरे जी ने एक किताब लिखी मैं छुपाना जानता गर, पूरा जो अदालती माहौल है उसमें खुल कर वो सामने सारी बातें रखते हैं और हम चमत्कृत होते हैं कि हमारी ही दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आत्मकथा लेखन का अपना एक महत्व है। और
1: रमाकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मकथाओं का संख्या है, आत्मकथाओं की संख्या कविता और कहानी की तुलना में कम है।
0: हाँ,
1: जबकि ये अधिकतम लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये सृजनात्मक गद्य से इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ज़्यादा हो सकता था। और इसका तरीका मुझे लगा हिंदी साहित्य में ये है, एक बात जो मैंने कही कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, और जिसे कहा जाए कि हम अपनी आत्मकथा को जहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ आपके पास पर्याप्त कंटेंट और तथ्य नहीं है।
0: शिकारी के पास
1: तो
0: होता
1: उसे
0: है,
1: कहते
0: के
1: हैं
0: पास
1: ना
0: होता है।
1: किसी ने लिखा कि हजरत अकबर जहां में कुछ कारो नुमाया कर गए, पैदा हुए बीए किया क्लर्की किए और मर गए। ऐसे से उनके पास चीज नहीं आती। तो ऐसे वक्त पर मेरे को ये लगता है कि एक नया तरीका निकाला गया, और ये नया तरीका निकला कि आप आत्मकथा की बजाय संस्मरण लिखें। बल्कि मैं एक कैटलॉग देख रहा था किसी का कि आत्मकथात्मक नुमा संस्मरण, ये उनकी हेडिंग है। और इसमें यदि आप देखें तो इसमें काम बहुत ज़्यादा हुआ। और यदि इस तरह के कामों को देखें तो आपने देखा होगा कि सारिका ने गर्दिश के दिन एक शीर्षक शुरू किया, किताबें हुई, और स्वयं प्रकाश की किताब भी, इसे भी हम आत्मकथा ही मानेंगे, हम सफरनामा, जिसमें उन्होंने अपने और अपने लेखों के बारे में किया। और रमाकांत जी, मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत यदि एक तरफ हम अपनी खबर से करते हैं तो दूसरी तरफ हम महादेवी वर्मा की तीन किताबों का नाम
2: लेंगे, अतीत के चलचित्र,
1: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। और ये पहली बार हुआ कि एक स्त्री का आपको मन दिखाई पड़ता है इन तीनों किताबों में, और एक स्त्री मन आपको एक आत्मकथा के रूप में सामने लाती है, जिसमें आप निराला के भव्यता को भी देखते हैं, तो एक छोटे से पिल्ले को, कुत्ते को,
0: जानवरों को,
1: तो ये भी तो आपके
0: घर में काम करने वाली जो
2: एक महत्वपूर्ण किताब का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, शशांक भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है
1: जी हाँ,
2: आज का अतीत
1: जी,
2: ये उसका शीर्षक ही बहुत व्यंजनात्मक, उसकी व्यंजनाएं बहुत हैं
1: जी हाँ,
2: है ना। आज का अतीत लिखना तो मुझे अतीत के बारे में है जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे आज लिखना है।

0: से,
1: आज
0: और आज आज लिखते हुए मैं उसको कैसे देखता हूँ, और उस अतीत ने मेरे आज को कैसे प्रभावित किया है। जैसे हम पाब्लो नेरुदा के मेमोयर्स की हम बात करें, है ना, या हम गोर्की की जो,
1: हाँ, जो तीन
0: किताबें हैं,
1: मेरा
0: बचपन,
1: मेरा विद्यालय, मेरे विश्वविद्यालय,
0: मेरे विश्वविद्यालय, है ना, जीवन की राहों पर और मेरे विश्वविद्यालय, ये चीजों को समग्रता में देखने की बात करते हैं। उसमें उसमें उस आत्मकथा में स्त्रियां भी आती हैं, स्त्रियों का विमर्श भी आता है, और जो आत्मकथा लेखक है वह भी आता है।
1: मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँगा कि आत्मकथात्मक में एक हम बात कर सकते हैं कि जो आत्मकथा का समय यदि लिखे जाने में नहीं है तो वह डायरी और संस्मरण, ये दो के बारे में है, और उन्हें दो हिस्से में लिखा जा सकता है। जैसे कांति कुमार जैन ने कहा कि दूसरों के बारे में लिखा, तो वो भी उनका एक आत्मकथा का हिस्सा हो सकता है जो अपने साथ बिताए क्षणों के बारे में।
2: लेकिन वो आत्मकथा को सहायता भर करता है, पर मेरे ख्याल से वो संस्मरण और आत्मकथा में एक एक थ्रेड तो है।
1: एक अपने समय के इतिहास को लिखता है, और अंततः आप अपने उस जीवन में प्रवेश करते हैं जहां आपका प्रिय लेखक क्या कर रहा है ये जानते हैं। इसके लिए मैं आखिरी में, हालांकि वो हमारे यहाँ के नहीं है, मार्क शगाल एक बहुत बड़ा पेंटर रहा है, उसकी आत्मकथा है, उसका हिंदी अनुवाद अखिलेश ने बहुत अच्छा किया है। उसके 5 लाइनों से इसकी पकड़ अपने को महसूस होती है। अपनी माँ के बारे में लिखता है, कोई शब्द नहीं, सब कहीं मेरे भीतर है, छटपटाहट और तुम, मेरी यादें तुम्हारी, तुम्हारा फीकापन, तुम्हारे हाथों का दुबलापन, तुम्हारे सूखे अस्थि पंजर, मेरी हलक में जान कहाँ से ले आते हैं, किससे प्रार्थना करूँ।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो कुछ है मेरे भीतर है, मैं इसी भीतर को बाहर तक लाने की प्रक्रिया को हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। आज रमाकांत जी और शशांक जी, आप स्टूडियो में आए और इस पर चर्चा में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर। परिचर्चा का विषय था हिंदी में आत्मकथा लेखन। प्रतिभागी थे शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की छठवीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। लीजिए सुनिए कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का छठा भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं भयानक जंगल के हिंसक भेड़ियों से बचने के लिए। एक अजनबी राजा को बबूल के पेड़ पर चढ़ जाने को कहता है और उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर चला जाता है। आचार्य नागदत्त के आश्रम में नीलमणि घायल अवस्था में बंधा हुआ मिलता है। नीलमणि की अच्छी तरह से परिचर्या और शुश्रूषा से वो ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त उसे अवंती पहुंचाने का निर्णय करते हैं। इस काम के लिए वो चंद्रसेन को चुनते हैं और साथ के लिए एक कृषक गोप को भेजते हैं। चंद्रसेन और गोप अश्व नीलमणि को लेकर अवंती चलते हैं।

चंद्रसेन ने अश्व की बहुत सेवा की थी, उसे नीलमणि से लगाव भी हो गया था। फिर आचार्य चाहते थे कि आश्रम की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो राजधानी से कुछ औषधियां और वस्त्रादि भी लेता आए। चंद्रसेन के मार्गदर्शन के लिए दैनिक भृत्ति पर एक गोप उसके साथ किया गया। आचार्य नागदत्त ने दो पत्र भी चंद्रसेन को दिए थे, एक अपने मित्र महामात्य पूर्ण रथ के प्रति संबोधित था, जिसमें राजा भर्तहरि के अश्व के भटक कर सेवाश्रम पहुंचने का विवरण था, और दूसरा अपनी पत्नी देवी वसुंधरा के लिए, जिसे 6 वर्ष पहले वो अवंती में छोड़ आए थे।

0: बंधु गोप
1: जी,
0: अभी तुमने बताया था कि अवंती यहाँ से एक योजन दूर है।
1: जी ब्रह्मचारी जी।
0: और कल से अब तक हम कितना चलकर आए हैं?
1: ये भी तो बताया था, चलिए पुनः बताता हूँ। हाँ। कि लगभग 6 योजन चले होंगे।

0: अच्छा
1: ब्रह्मचारी जी, आप बार बार ये सब क्यों पूछते हैं? थक गए हैं क्या?
0: नहीं नहीं थका नहीं हूं।
1: विचित्र हैं आप। कसी हुई काठी वाला इतना पुष्ट चपल सबल अश्व होते हुए भी पैदल चलने की हट कर रहे हैं। ग्रामवास के लोग हमें देखकर आश्चर्य करते हैं, आपसे हंसते हैं, पूछते हैं और व्यंग करते हैं।
0: अरे
1: अरे किस किस को बताएं भाई कि राजा का अश्व है, साधारण जन इस पर नहीं बैठते। अब चलो मान लिया कि ये बंधन युक्त अकुलीन के लिए है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, बैठ लेते तो थकते नहीं और बार बार प्रश्न भी नहीं पूछते। कितना चलाए और कितना अभी चलना है।
0: अरे अरे तुम तो रुष्ट हो गए बंधु।
1: कठिनाई यही है ब्रह्मचारी जी कि आप पर रुष्ट भी तो नहीं हुआ जा सकता, इतने सरल हैं आप, सरल और भोले।
0: बंधु अश्व पर न बैठने का एक कारण है मेरे पास। पशु भी जीव है और यदि मैं इस पर अपना भार ला दूंगा तो हिंसा होगी।
1: हिंसा? हिंसा क्या होती है भोले बाबा?
0: देखो किसी जीवात्मा को मन वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाना हिंसा होती है बंधु।
1: यही हिंसा है तो महाराज फिर तो जीवन ही असंभव हो जाएगा।
0: कैसे?
1: अरे हिंसक पशु आएंगे और हमारी खेती को उजाड़ देंगे, बिना अन्न के हम कैसे जिएंगे? अब हिंसक चोर डाकू लुटेरे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमारे प्राण भी, और हम नतमस्तक अत्याचार को सहकर कहते रहेंगे अहिंसा परम धर्म है बंधु।
0: उनसे बचने के उपाय करना चाहिए। उत्तर में प्रतिहिंसा आवश्यक नहीं है। अरे अवंती की अट्टालिकाओं के शिखर कलश दिखने लगे हैं, क्या आ पहुंचे बंधु?
1: नहीं अभी भी हमें 2 कोस और चलना है।
0: अरे
1: 3 घड़ी का समय अभी और लगेगा।
0: अच्छा
1: पहुंचते पहुंचते तो समझ लीजिए गोधूली का समय हो जाएगा। चलिए चलिए।
0: हाँ अवंती मेरे लिए एक स्वप्न जैसा है बंधु, स्वर्ग के होने या ना होने का प्रमाण भी नहीं है, स्यात एक कल्पना भर है जो लुभाती है, किंतु इस नगर में सुख सुविधा विलास की सारी सामग्री उपलब्ध है जो इस कल्पना की रचना करती है, किंतु मनुष्य को इनके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सुख सुविधाएं सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, जियो और जीने दो, ठीक है ना बंधु?
2: परिचित पथ पर आ पहुंचने के कारण नीलमणि उत्तेजित हो जाता है और हिनहिनाता है।
0: अरे अरे अरे नीलमणि तुम भी जान गए कि अवंती आ पहुंची, उत्तेजित मत हो, हमें भी साथ साथ चलना है।
1: अरे ये क्या कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, वल्गा को मत खींचिए।
0: क्यों?
1: अरे अश्व को पीड़ा होगी, ये तो हिंसा होगी ना ब्रह्मचारी जी, क्यों ठीक है ना?
0: तो क्या करूं? अरे बलगा ढीली होगी तो भाग जाएगा।
1: तो भाग जाने दीजिए, उसका परिचित नगर है, भागकर अपने स्थान पर ही पहुंचेगा, जाने दीजिए।
0: किंतु इसे वहां तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है, महामात्य तक आचार्य का पत्र भी तो पहुंचाना है।
2: दूर से कई घोड़ों के टापों की आवाज निकट आ जाती है, राज्य के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं।
3: रुको, इन दोनों को बंदी बना लो।
0: लेकिन लेकिन हमारा अपराध क्या है नायक?
3: यह अश्व तुम्हें कहां से मिला?
0: कोई अज्ञात व्यक्ति इसे हमारे सेवाश्रम के द्वार पर बांध गया था, घायल था, हमने इसकी परिचर्या की, हमें ज्ञात हुआ कि यह महाराज भर्तृहरि का प्रिय अश्व है, सो इसे पहुंचाने जा रहे हैं। महामात के नाम आचार्य श्री का पत्र है मेरे पास।
1: अब चोरी की हुई वस्तु इस तरह दिन दहाड़े नहीं लाई जाती नायक।
0: हाँ?
1: और वो भी उस स्थान पर जहां उसे सब चीनते हों। हम आचार्य नागदत्त के सेवाश्रम से आए हैं, उनका पत्र है हमारे पास, और ये ब्रह्मचारी जी है, इनकी वेशभूषा से नहीं जाना आपने?
4: क्षमा करें, चलिए नीलमणि को हम ले चलते हैं।
5: लेकिन यह तो अड़ रहा है, लगता है ब्रह्मचारी जी आपके बिना नहीं जाएगा यह आगे।

0: चलो भाई चलो नीलमणि चलो, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
1: सैनिक तुम वहां ले जाकर सूचना दो कि हम नीलमणि के साथ वहां पहुंच रहे हैं।
2: हाँ, और हम भी जो सेवाश्रम से नीलमणि को यहां तक लाए हैं।

0: नीलमणि को लाने के लिए स्वयं महामात्य वहां उपस्थित होते हैं।
1: अपने घर आ गए हो नीलमणि तुम। राजा भर्तृहरि का आवास है ये, और तुम्हारा भी। ये सब तुम्हारा अपना ही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं।
2: अश्वहार, नीलमणि को संभालो। आप कहां से आए ब्रह्मचारी जी? नीलमणि आपको कहां मिला?
1: हम आर्य नागदत्त के सेवाश्रम से आए हैं महाराज। वहीं कोई एक दिवस नीलमणि को छोड़ गया था घायल अवस्था में। आचार्य श्री ने महामात के लिए एक पत्र भी दिया है।
2: अच्छा,
1: जो उन्हें सौंपना है। क्या आप बताएंगे कि महामात से कहां भेंट हो सकती है? और मान्यवर, मैं ब्रह्मचारी नहीं, सेवाश्रम का एक अकिंचन सेवक मात्र हूं। चंद्रसेन नाम है मेरा। यह वेशभूषा मुझे अच्छी लगती है।
2: महामात्य आपके सामने है
1: क्या?
2: मैं ही महामात्य पूर्ण रथ हूं। आर्य नागदत्त का पत्र आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, और अब आप राजकीय अतिथि हैं। महास्पद, अतिथिशाला में इनकी व्यवस्था करवाएं।
1: जी, आप महामात्य? प्रणाम निवेदन करता हूं। ये मेरे साथ आए हैं गोप, कृषक हैं। मान्यवर, पत्र ये रहा।
2: आप थके हुए होंगे, अतिथिशाला में जाकर विश्राम करें। प्रातः भेंट होगी।
1: जैसी आज्ञा।
2: तभी आर्य नागदत्त का उत्तर भेज दूंगा मैं।
1: हम दो एक दिन रुकना चाहेंगे। आचार्य श्री के लिए कुछ औषधियां ले जानी है। अभी तो हमने भगवान महाकाल के दर्शन भी नहीं किए। क्षिप्रा तट, रुद्र सागर देखना है।
2: हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, जब तक जी चाहे जब तक रहिए आप।
1: धन्यवाद।
2: सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। महास्पद ध्यान रखेंगे।

0: उज्जैनी का प्रथम दर्शन इतना मनोरम है तो भ्रमण कितना सुखदायी होगा। बंधु, हमें अवंतिका का भ्रमण करना है, कितना समय लगेगा?
1: ब्रह्मचारी महाशय, नगर का अंतर विस्तार 1 योजन है और वह 4 योजन। भ्रमण 1 से 3 दिवस में भी संभव है और महीने वर्ष भी लग सकते हैं।
0: क्या?
1: हाँ, आप पर निर्भर है। अरे? आपके मंतव्य और आपकी प्रेरणा पर। अतिथिशाला आ गई।
0: अच्छा।
1: रथ से उतरिए। निरंजन।
2: आज्ञा श्रीमान।
1: ये महामात्य के अतिथि हैं।
2: श्रीमान।
1: इनका ध्यान रखना, किसी तरह की असुविधा ना हो।
2: श्रीमान।
1: रथ, शिविका, जो भी कहें उपलब्ध करवाना।
2: श्रीमान।
0: हमें 3 दिन रहना है।
1: जब तक चाहें आप रुक सकते हैं।

0: कहां से पधारे हैं आप दोनों?
1: सेवाश्रम से, दशपुर के मार्ग पर 5 योजन उत्तर में है।
0: पधारिए, आइए।
2: ब्रह्मचारी जी, स्नान ध्यान तो सकुशल संपन्न हो गया। राजभवन से कोई आया है।
1: राजभवन से कौन है?
2: महामात्य महोदय ने कहला भेजा है, उन्होंने आपका स्मरण किया है।
1: कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने स्मरण किया, मेरा उन्हें धन्यवाद निवेदन करें।
2: संभवतया आपके सम्मुख आशय स्पष्ट नहीं हुआ।
1: क्या?
2: महामात्य ने स्मरण किया है।
1: हाँ।
2: इसका अर्थ है वो आपसे भेंट करना चाहते हैं।
1: अच्छा।
2: उन्होंने आपको अभी बुलाया है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। सीधे कही गई बात ही समझ में आती है सरलता से बंधु। मित्र गोप
2: जी,
1: मैं अभी लौट कर आता हूँ, तब दर्शन और नगर भ्रमण के लिए चलेंगे, ठीक है?
2: हाँ ठीक है।

0: आइए ब्रह्मचारी जी, आप इस विशिष्ट कक्ष में विश्राम करें। महामात्य को आपके आगमन की सूचना है, वो पधार रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: जय जनेश आर्य।
3: जैन हो ब्रह्मचारी?
2: जन्म से तो नहीं आ रही, किंतु इस कठिन साधना मार्ग की ओर आकर्षण है। सेवा कार्य में जिस ऐन्द्रिक निग्रह और आत्मतप की आवश्यकता होती है, उसका अभ्यास इसी मार्ग से संभव प्रतीत होता है। मैं तो सेवक हूं आर्य।
3: बैठो।
2: धन्यवाद।
3: चंद्रसेन नाम है तुम्हारा
2: महाराज।
3: श्रेष्ठ नागदत्त ने अपने पत्र में बताया है, नीलमणि की चिकित्सा करके तुमने अवंती राज्य और हम सब पर उपकार किया है। भाई, हम सब तो आभारी हैं तुम्हारे।
2: आपकी अनुकंपा है आर्य।
3: कुछ बता सकते हो नीलमणि किस दिशा से भटकता हुआ आश्रम तक पहुंचा होगा?
2: आर्य, ये जानने का प्रयत्न हम में से किसी ने भी नहीं किया। अश्व नीलमणि को हमने आश्रम के द्वार पर बंधा हुआ पाया था।
3: अच्छा।
2: वो नितांत अकेला था और शरीर पर घावों की पीड़ा से विचलित हो रहा था।
3: ओ।
2: हमें लगा कि तत्काल ही उसका उपचार आवश्यक है, खोजबीन का तो अवसर ही नहीं था। मैंने भेषज्ञ को कहा, आश्रम अध्यक्ष को सूचित किया, फिर सभी उपचार में लग गए। यदि वर्षा का व्यवधान ना हुआ होता तो हम कुछ पहले ही उसे यहां ले आते।
3: अच्छा, नीलमणि के आश्रम में पाए जाने की तिथि स्मरण है तुमको ब्रह्मचारी?
2: खूब स्मरण है आर्य। आश्रम के देवज्ञ से मैंने जानकारी ली थी। रोग के उपचार में ऋतु, नक्षत्र और स्थान का ध्यान रखा जाता है। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था और श्रावण का महीना।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थात एक ही रात्रि में नीलमणि आश्रम जा पहुंचा था। वो एक रात्रि में 50 कोस तक चलने में सक्षम है, किंतु ऊबड़ खाबड़ अरण्यों राहों पर इतना चल पाना तो संभव नहीं। हो सकता है कि उसने 30-40 कोस की यात्रा की हो। सेवाश्रम पश्चिम में है, नरेश ने दक्षिण द्वार से प्रस्थान किया था, अर्थात चंद्रसेन।
2: महाराज,
3: एक बार फिर आपको धन्यवाद।
2: महाराज,
3: महारानी पिंगला ने भी तुमसे भेंट का आग्रह किया है।
2: अच्छा।
3: कुमारस्पद तुम्हें उन तक ले जाएंगे।
2: आर्य, मुझे केवल 3 दिन रुकना है, भेंट और भ्रमण के लिए केवल 3 दिन।
3: अरे भाई, तुम्हारे लिए रथ और शिविका की व्यवस्था है, अतिथिशाला में भी पूरी व्यवस्थाएं हैं राज्य की ओर से, फिर संकोच कैसा। हाँ, अगर कुछ क्रय करना हो तो इन्हें रखो।
2: अरे किंतु
3: इसमें कुछ स्वर्ण और कुछ रौप्यक मुद्राएं हैं, अरे भाई बच जाएं तो आश्रम को दे देना।
2: अरे मुझे मुद्राओं की आवश्यकता नहीं, धन होगा तो चोर और तस्कर पीछे लग जाएंगे, इस भार की चिंता बनी रहेगी।
3: ब्रह्मचारी, तुम महानगर में हो, यहां कार्य व्यापार का आधार मुद्राएं ही नियमित निर्धारित करती हैं। फिर तुम्हारे साथ तो वो गोप भी है ना, उसकी आवश्यकताएं भी तो हो सकती हैं।
2: उचित है, वो तो ग्रस्त है, रख लेता हूं।
3: कुमारस्पद, ब्रह्मचारी को राजमहालय पहुंचा दें।
0: जी श्रीमान।

रथ पुनः राजपथ पर दौड़ने लगता है। चंद्रसेन की दृष्टि फिर से मार्ग की मनोरम्यता पर घूमने लगी। बीच बीच में महामात्य द्वार से प्रवेश के उपरांत दृश्य और भी मनोहर होने लगते हैं। स्थान स्थान पर रंगीन पिंजरों में बैठे शुक सारिका स्वागतम स्वागतम की ध्वनि निकालने लगते हैं।

0: यहाँ तक सब नहीं पहुँचते।
1: अरे
0: विशिष्ट जन ही यहाँ आ पाते हैं ब्रह्मचारी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: यहाँ कोई अपरिचित प्रवेश नहीं कर सकता।
1: अच्छा,
0: आप अतिथि गृह में प्रतीक्षा करें, महादेवी को सूचित कर दिया गया है।
1: हाँ,
0: रथ बाहर द्वार पर खड़ा रहेगा।
1: ठीक है।
2: चंद्रसेन अतिथि कक्ष में बैठ जाते हैं। महारानी पिंगला की परिचारिका वयसिका उनके सामने मधुरव्य एवं खाद्य पदार्थ रख देती है। तभी महादेवी पिंगला का आगमन होता है।
3: प्रणाम, बारंबार प्रणाम महादेवी। मैं सेवाश्रम का सेवक चंद्रसेन आपको प्रणाम निवेदन करता हूं।
4: बैठे ब्रह्मचारी, अवंती में आपको कोई असुविधा तो नहीं है?
3: आपकी कृपा से सब ठीक है, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति में बैठ कैसे सकता हूं? शास्त्रों का कथन है कि राजा देवतुल्य होता है।
4: अच्छा, फिर कुछ रानी के विषय में भी तो कहा गया होगा?
3: सादृश्य न्याय के अनुसार रानी भी समतुल्य न्याय की अधिकारिणी है।
4: तो देवी की आज्ञा स्वीकार करो ब्रह्मचारी और बैठ जाओ।
3: जो आदेश।
4: ब्रह्मचारी।
3: महारानी।
4: राजा भर्तृहरि का अश्व लेकर तुम ही आए हो।
3: बिल्कुल।
4: नरेश के विषय में तुम्हें कुछ ज्ञात है?
3: क्यों नहीं महादेवी, उनकी योग्यता, सिद्धता, न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता जगत विख्यात है।
4: कुछ और?
3: आप ही बताएं।
4: महाराज का अश्व तो तुम राजधानी ले आए, किंतु स्वयं महाराज नहीं लौटे हैं।
3: क्या?
4: अब तक किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। हम उनके समाचार के लिए उत्सुक हैं। तुम्हें कुछ ज्ञात है?

0: आहत अश्व, कई दिनों से नरेश का न लौटना, किसी सूचना का न होना, विषाद में डूबी महादेवी, अवश, आकुलता, चिंतित महामात्य, कुछ तो ऐसा अवश्य है जो शुभ नहीं है।
1: इसे कोई सूचना मिले तो हमें तुरंत अवगत कराना ब्रह्मचारी।
2: जो आदेश।
1: और हाँ, श्रेष्ठीवर नागदत्त को हमारा अभिवादन कहना।
2: महादेवी।
1: वैसिका, ब्रह्मचारी का सत्कार करो।
3: कहाँ गए होंगे राजा भर्तृहरि?
4: अवश्य सकुशल होंगे, हम सबका मन भी यही कहता है।
1: तुम्हारी वाणी सत्य हो ब्रह्मचारी।

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का छठा भाग सुन रहे थे।

कंचन राजानी, चंद्रसेन, बद्रवास्ती, गोप, विवेक मृदुल, महामात्य, अरशद इकबाल, महस्पद, नजीर कुरैशी, नायक विक्रांत निम्बोरे, संयोजक राकेश ढौंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको ज्ञात ही है कि चंद्रसेन इन दिनों अवंती में है। चंद्रसेन की बातों से महारानी पिंगला की अनुचरी वैसिका अत्यंत प्रभावित होती है। चंद्रसेन देवी वसुंधरा के नाम आचार्य नागदत्त का पत्र देने उनके आवास जाते हैं। अगले भाग में हम देवी वसुंधरा के व्यक्तित्व से परिचय प्राप्त करेंगे।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसेट

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी एवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है, है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: विधानसभा में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया। विपक्ष के नेताओं ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान कर्मियों, 283 माइक्रो ऑब्जर्वरों और महिला मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया और असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीकी और उन्नत पदार्थ विज्ञान है। भोपाल में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन किया गया, जहां पर 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले इंदौर पुलिस के ही नाम 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के HS प्रणॉय का अभियान पहले दौर में ही समाप्त हो गया है। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती को पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत के खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति है।

रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रीन कंप्यूटिंग और ई मोबिलिटी की और जानेंगे कि कैसे आधुनिक तकनीक पर्यावरण संरक्षण में हमारी साथी बन सकती है। साथ ही चर्चा करेंगे आजकल युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे ट्रेंड थ्रिफ्टिंग और रीसेलिंग की, जो न केवल समझदारी से खर्च करना सिखाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म संगीत और जानेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

साथियों, आज के समय में तकनीक के बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। पढ़ाई हो, नौकरी हो या रोजमर्रा के काम, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है? इसीलिए आज पूरी दुनिया सिर्फ नई तकनीक ही नहीं बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की भी बात कर रही है, यानी ऐसी तकनीक जो हमारी जिंदगी को आसान भी बनाए और पर्यावरण का भी ध्यान रखे। इसी ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है ग्रीन कंप्यूटिंग। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल उपकरणों का ऐसे इस्तेमाल करना जिससे बिजली की बचत हो, ई कचरा कम बने और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। हम भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे काम खत्म होने पर कंप्यूटर या लैपटॉप बंद कर देना, ज़रूरत ना होने पर चार्जर निकाल देना, पुराने मोबाइल और लैपटॉप को सही तरीके से रिसाइकल करना और बिजली बचाने की आदत अपनाना। दोस्तों, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आइए उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, अभी हमने जाना ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं न्यू एज मोबिलिटी की। न्यू एज मोबिलिटी का मतलब है ऐसे सफ़र को अपनाना जो हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर हो, जैसे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, ई स्कूटर या फिर बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर छोटी दूरी हो तो पैदल चलना या साइकिल चलाना भी एक अच्छा विकल्प है। इससे ना सिर्फ प्रदूषण कम होता है बल्कि ईंधन की बचत भी होती है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। याद रखिए, अगर तकनीक का सही इस्तेमाल करें और सफ़र के सही साधन चुनें तो हम अपनी धरती को और भी साफ, हरा भरा और रहने लायक बना सकते हैं। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं आज की शाम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पुराने कपड़े, किताब या फर्नीचर को किसी और के इस्तेमाल में आते देखा है? आजकल युवाओं के बीच थ्रिफ्टिंग और रीसेलिंग का काम तेजी से बढ़ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो थ्रिफ्टिंग का मतलब है अच्छी हालत में मौजूद इस्तेमाल की हुई चीज़ें खरीदना, और रीसेलिंग का मतलब है अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को किसी और को बेच देना ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल हो सके। यह सिर्फ पैसे बचाने या कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने का भी एक अच्छा तरीका है। जब हम किसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत कम पड़ती है। इससे कच्चे संसाधनों यानी रिसोर्सेज की बचत होती है, कचरा कम होता है और पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ता है। आजकल कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कपड़े, किताबें, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते और बेचते हैं। इससे एक तरफ उनकी बचत होती है तो दूसरी तरफ जो सामान किसी के लिए बेकार हो चुका है वो किसी और के काम आ जाता है। बस एक बात का ध्यान रखें, कोई भी सामान खरीदने या बेचने से पहले उसकी हालत अच्छी तरह देख लें, सही कीमत तय करें और हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही सामान खरीदें। याद रखिए, किसी भी चीज़ की असली कीमत तब तक बनी रहती है जब तक उसका सही इस्तेमाल होता रहे। इसी खूबसूरत सोच के साथ बढ़ते हैं आज की शाम के अगले गीत की ओर।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL ने असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जा सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है ये प्यारा सा गीत।

जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ साथियों पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

जीतेंगे हम ये वादा करिए, कोशिश हमेशा ज़्यादा करिए, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करिए। साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों और समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों और समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। सूचना समाप्त हुई।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
7: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
8: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
7: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
7: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
7: सफर में
6: आपके साथ
7: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में तमाशा फिल्म का गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं और तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। बोल है इरशाद कामिल के, संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने, और खूबसूरत आवाजें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की।

सोनू निगम, आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म मैं हूं ना का बहुत ही खूबसूरत गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो, और जो तो बई गीत है, जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
5: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो बई लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
4: काय ऐसो का होगा जिज्जी,
5: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।

किया है। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, आईटी, कृषि, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विधानसभा में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया। विपक्ष के नेताओं ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान कर्मियों, 283 माइक्रो ऑब्जर्वरों और महिला मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया और असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीकी और उन्नत पदार्थ विज्ञान है। वहीं भोपाल में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम की 6 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
0: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
2: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
0: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
2: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जोन व्हील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
2: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
1: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
1: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
1: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम

0: राज्य की सीमा पर है।
1: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया।
2: अरे भाई चाउतान जी घर पर हैं क्या?
3: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते
4: नमस्ते
3: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
2: बिल्कुल ठीक पहचाना।
3: आइए, स्वागत है आप सबका।
2: धन्यवाद।
3: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
2: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
4: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
3: थैंक यू।
5: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
3: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
2: जी,
3: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
2: बिल्कुल ठीक कहा।
3: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
2: अरे
3: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
2: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
4: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
2: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
5: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
3: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
4: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
3: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
4: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
5: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
3: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
4: तो हम भी चले?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
4: चलो चलो चलो।
1: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
0: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया, और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
1: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान जी से कहा,
4: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चाउतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: अरे
1: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाउतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
3: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
4: अच्छा।
3: वहाँ वो मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
4: जी अंकल।
3: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
4: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
3: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
4: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, so we will sing the happy song again but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langdingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी की कलम से निकले हुए कुछ खूबसूरत गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मिलन फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरी हमसफर से। महेंद्र कपूर, बलबीर और साथियों की आवाज़ है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

महबूब की मेहंदी। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और खूबसूरत बोल आनंद बख्शी के।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म लव स्टोरी से। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत आर डी बर्मन का।

आनंद बख्शी साहब की एक और रचना सुनिए, फिल्म लोफर से। आशा भोसले ने इसे आवाज़ दी है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजाता थे और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाती थी।
3: हाँ खूब सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जैसे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
2: 9425702768।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
2: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
4: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान

आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगी। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड NHPC ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित NHPC तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जाँच की जाएगी। NHPC ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। NHPC ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस की मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांधिकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज आप

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे में व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता बिल पास। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। कल होगी विस्तृत चर्चा और 2 से 3 हफ्ते की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय। 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया के दौरे पर हैं। स्कोपजे में राष्ट्रपति गोल्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अपने संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, आईटी, कृषि, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस मौके पर स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खासतौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना सस्ती फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए छोटे उद्यमों को औपचारिक रूप दे रही है। मंत्री चिराग पासवान ने अपने लेख में बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक क्रेडिट मंजूर किए जा चुके हैं। विधानसभा में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया। विपक्ष के नेताओं ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन के बीच में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखी और सरकार ने बहुमत के बल पर बिल पास करा लिया।
1: महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां 1 से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा। केवल विवाह नहीं, उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिविंग इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा।
0: विधानसभा के मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट प्रस्तुत किया। इस पर कल सदन में विस्तृत चर्चा होगी। बजट में सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए नर्मदा घाटी विकास विभाग को सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। वहीं सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। किसानों को राहत देने के लिए भावांतर योजना के लिए 313 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, पुलिस आधुनिकीकरण और परिवहन सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मंजुल शरद शाह से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान कंपनी ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करने के लिए 6,200 करोड़ रुपए के निवेश की मंशा व्यक्त की। इस परियोजना से प्रदेश में करीब 2,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इस भेंट के दौरान मध्य प्रदेश शासन और कंपनी के बीच निवेश संबंधी सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को संबोधित किया। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत अलग अलग जिलों में कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीकी, जैविक खेती और स्मार्ट सिंचाई के बारे में जागरूक किया गया। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान जल संरक्षण का शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान बारिश के जल के संचयन को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सही।

भेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर कल सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में सुनना न भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं जल संरक्षणवादी उमाशंकर पांडे रहेंगे। भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला को प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल राशन वितरण की योजना नहीं बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन देने का सामाजिक न्याय का माध्यम है। उन्होंने ये भी बताया कि आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन की गाड़ी सीधे गांवों में जाकर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। नटराजन आज जबलपुर पहुंची और निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की। उनका आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना किसी ठोस कानूनी आधार के उनका नामांकन पत्र रद्द किया था। 9 जून को फॉर्म 26 में कथित जानकारी छिपाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द किया गया था, जिसके बाद चुनाव निर्विरोध हो गया था। वहीं दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान कर्मियों, 283 माइक्रो ऑब्जर्वरों और महिला मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया और असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मतदान दिवस पर दतिया विधानसभा क्षेत्र और उससे लगे 3 किलोमीटर के दायरे में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अनूपपुर जिले में कल से अमृत हरित महाअभियान और एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान की शुरुआत होगी। जिले की 10 नगरीय निकायों में करीब 1,15,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके अलावा वन विभाग की ओर से 3 लाख से अधिक के पौधे अलग से रोपित किए जाएंगे। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि 24 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अमरकंटक, जैथरी, अनूपपुर, बिजुरी और कोटमा सहित सभी नगरीय निकायों में पौधरोपण किया जाएगा। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन किया गया है। यहां पर 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यह प्रमाण पत्र पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को सौंपा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में 2 से 3 हफ्ते की सुस्ती के बाद अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 4.1 इंच बारिश राजगढ़ में हुई है, जबकि रायसेन में 2.5 इंच और उमरिया में 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीक और उन्नत पदार्थ विज्ञान है, जिसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल विज्ञान पर विशेषज्ञ व्याख्यान होंगे। प्रतिभागियों को IIT इंदौर की प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कराया जाएगा। वहीं खेल के समाचार में चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के HS प्रणॉय का अभियान पहले ही दौर में समाप्त हो गया। चांगझो में आज खेले गए मुकाबले में HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाओ ने 21-10, 21-14 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्राम झागर की गौशाला में अमरूद, जामुन और बेलपत्र जैसे पौधों का रोपण किया गया। गुना जिले के शासकीय ITI राधोगढ़ में 22 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खरगोन में युवाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडला के शासकीय उत्कर्ष विद्यालय में बाघ और वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को वन्यजीव संरक्षण की जानकारी दी गई। खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। झाबुआ पुलिस के द्वारा जिले भर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और धार जिले में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत उपसंचालक डॉक्टर राकेश सिंह सिसोदिया ने पशुपालकों से संवाद किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे में व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता का बिल पास। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। और 2 से 3 हफ्ते की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी जनों को
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। भैया सुने अपना प्रिय कार्यक्रम चौपाल।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सभी भैयारन को कल्पना बहन की राम राम और करते स्वागत आज के चौपाल कार्यक्रम में। और बताओ भैयारो, कैसे का हाल चाल है आप औरन के? हम जानते हैं कि हमारे भैया हरन के घर परिवार में सभी जने खूब ही राजी खुशी से हेंगे। और देखो हम भी अपने परिवार के संग खूब ही अच्छे से हेंगे। और भैया देखो, दिल से तो हम जो ही चाहते हैं कि हमारे सभी भैया हरन के घर परिवार में सभी जने खुश रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना हम अपने भैया हरन के घर परिवार के लाने करते हैं। तो भैया और देखो, स्वस्थ तो हम तभी रह सकते हैं जब हम अपन ध्यान अच्छे से रखें। काहे से के भैया देखो, अबे जाट में बरसात को समय तो चल रहा है लेकिन अबे वर्षा नहीं हो रही है जैसे कि होना चाहिए। जैसे फिर देखो इन दोनों में तनक सी लापरवाही से सर्दी जुकाम खांसी बुखार है जाता है। तो ई के बचाव के लिए सबसे पहले स्वच्छ जल स्वच्छ भोजन को इस्तेमाल करने हैं, यानी कि भैया हो ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान देने हैं और अपने पशुधन पे भी ध्यान देने हैं, उनके गौशालों को भी साफ सुथरो रखने हैं। भैया हो देखो, चर्चा तो हम आगे और भी करें हैं, पहले लेते हैं तनक विराम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भैया और देखो, स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। भैया और देखो, अब अपन चर्चा कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो भैया और देखो, अपन सभी में एक आदत तो होता है कि अपन हो रहे हैं कुछ पैसा बचा बचा के अपने पास अलग से रख लेते हैं,

अगर वो अपन और है जय पैसा को देखो बैंक में जमा करें या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करें तो हमें उन पैसे पे ब्याज मिलते हैं और संग ही संग हम पैसा भी सुरक्षित रहते हैं। और अगर भैया जी पैसा घर में रहते हैं तो वो देखो वो रुपया पैसा खर्च है जाते हैं। आप और हम देखो अच्छी तरह से जानते हैं कि घर परिवार में कछु ना कछु लोग ही रहते हैं। अगर जे पैसा हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कछु योजना में जे पैसा लगाते हैं तो हमें ब्याज अच्छे से मिल जाता है। और भैया हमें जे योजना से एक बात याद आ गई है कि जे योजना है अटल पेंशन योजना, तो जामे जमा को लाभ लेवे के लिए कछु बातन को भी ध्यान रखना है। तो भैया देखो जे योजना को लाभ लेवे के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए और ई के साथ साथ जे बैंक में खाता होना चाहिए। और जो ये योजना को लाभ ले रहे हैं वो आयकर दाता होना चाहिए और ई के संगे संगे वो हितग्राही कोनो और पेंशन योजना को लाभ नहीं ले रहे हुए और अंशदान के रूप में एक राशि निश्चित समय तक जमा करी जाते है। और हाँ भैया हरो जे अटल पेंशन योजना में एक बात जे अच्छी है कि जिले में सभी निवास करवे वाले लोग जे योजना को लाभ लेवे वाले की 60 साल की आयु हुए पे उनको पेंशन मिलन लगाते है। और भैया हमारे भैया हैं बहने हैं जे योजना को लाभ लेवा चाहते हैं वे फॉर्म भरवे के लें और पूरी पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और जे फॉर्म भरवे के लें जनपद पंचायत के सीईओ ग्राम पंचायत के सचिव से मिलके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ भैया जे योजना विशेष रूप से किसानों मजदूरों छोटे दुकानदारों घरेलू कामगारों और अन्य मेहनत कश लोगों के लिए लाभकारी होते हैं। इसे बुढ़ापे में आर्थिक चिंता कम होते हैं और परिवार पर बोझ नहीं बनते हैं। और यदि डाकघर में बैंक में बचत खाता है तो जे अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। बस ई के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी उपयोगी रहते हैं। और हाँ भैया ई में हर महीना अपनी उम्र के अनुसार एक छोटी सी राशि जमा करनी पड़ती है फिर 60 वर्ष की आयु पूरी होवे पे पेंशन मिलन लगता है। और पेंशन की राशि 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये प्रति माह तक चुनी जा सकता है। और भैया हरो अटल पेंशन योजना की असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगन के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जैसे बुढ़ापे में हर व्यक्ति को निश्चित पेंशन मिल सके और सम्मान के साथ अपन जीवन जी सके। भैया और देखो चर्चा तो अपन आगे और भी करे हैं, पहले सुन लेते हैं जो वर्षा गीत बाबूलाल कुशवाहा और साथी से।

भैया हो, फिर से स्वागत है चौपाल कार्यक्रम में। भैया और देखो, खेती किसानी हमारी जीविका को आधार है और वही से हमारी गुजर बसर होता है। तो हमारे किसान भैया हरन को हर फसल के लिए और हर मौसम के लिए जागरूक रहना पड़ता है। तो हम और हर मंगलवार को लेके आते हैं मौसम की जानकारी। तो भैया हो सुने, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषक सम्यक सलाह जाकी जानकारी दे हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह। तो चले सुनते जो फोन

0: नॉट कार्यक्रम।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता बिजाराजी सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर अरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 4.4 से 5.3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 30 से लेकर 39 और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 60 से 85 और शाम को 45 से 80% के बीच दर्ज की गई। किसान भाइयों, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहने तथा वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 30.1 से 30.6 और न्यूनतम तापमान 25.1 से 25.4 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता सुबह 93 से 95 और शाम को 78 से 84% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए जो आपको कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, आगामी सप्ताह में हल्की से भारी यानी एक दिन अच्छी वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए अभी फसलों में खरपतवार नाशी व नत्रजन की मात्रा को स्थगित करें। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम में वर्षा होने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त वर्षा जल को फसलों से निकालने की व्यवस्था करें, विशेष रूप से सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में। साथ ही किसान भाइयों, फसलों की बात करें तो इस समय अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी इमेजा थायपर प्लस इमेजा मास 70 ग्राम दवा 576 लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन की अवस्था पर आपकी फसल हो जाए उस समय मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों, तिल की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए तिल की फसल की जो लोग बुवाई नहीं कर पाए वो इस समय बुवाई कर सकते हैं। साथ ही जो बुवाई कर चुके हैं तो उसमें अतिरिक्त वर्षा जल निकालने की व्यवस्था करें। साथ ही किसान बाजरा की बात करें तो क्योंकि इस सप्ताह में वर्षा की संभावना है तो इस सप्ताह के बाद में बाजरा की फसल में जब मौसम साफ हो जाए तो निराई करें, क्रॉप करें और नत्रजन की मात्रा को दें। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम धान के लिए रोपाई के लिए काफी अनुकूल है तो इस समय धान की रोपाई करें। साथ ही किसान भाई, उर्द मूंग और सोयाबीन की बात करें तो इसमें पीला मोजेक रोग के नियंत्रण हेतु रोगी पौधों को खेत से उखाड़ कर गड्ढे में दबाकर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी कीट की रोकथाम हेतु थायमेथाटियम 25 WG 100 ग्राम दवा 576 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों, संभावित मौसमों को देखते हुए जो आपकी सुबह सब्जियां लौकी तोरी कद्दू ककड़ी जो तैयार है तो उनको तोड़ाई कर बाजार भेजें क्योंकि वर्षा की वजह से उनको खराब होने की संभावना हो जाएगी। साथ ही किसान भाई, भिंडी की बात करें तो भिंडी इसमें फलन अवस्था में है तो इसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। मौसम का कीटों के लिए अनुकूल है अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाई मेथल 750 ml दबा पर ट्रैक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 से 3 छिड़काव जब आपका मौसम साफ हो उस समय करें। साथ ही किसान भाई, बात करें बैंगन टमाटर खरीफ प्याज और अगेती फूलगोभी की पौध किसान भाइयों ने लगा दी है तो वर्षा की संभावना को देखते हुए उनमें इस समय जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही किसान मिर्च की बात करें तो जो फलन अवस्था में मिर्ची है उसमें छुटरामरा रोग की संभावना हो सकती है तो दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 25 WG 100 ग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, बैंगन और टमाटर में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीवा क्रोन 1 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम में गाभिन गायों को परजीवी से बचाव हेतु यानी डिवरिंग पेट के कीड़े मारने की दवा फेनबेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से खिलाएं। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम में पशुओं में होने की संभावना अधिक रहती है तो इस समय संक्रामक रोगों से बचाव हेतु पशुओं को दूषित चारा दाना न खिलाएं। साथ ही तालाबाद का पानी न पिलाएं, स्वच्छ ताजा नाली नल का पानी। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर हरविंद सिंह।
0: भैया। और

अब आप सुन रहे थे जो डॉक्टर हरविंदर सिंह भैया से फोन पे, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषक सम्यक सलाह। तो भैया और देखो, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जे कृषक सम्यक सलाह बड़े ध्यान से सुनी हुई है और इको लाभ आप पूरा ले हैं। अब भैया और देखो, बारी है एक और गीत की, तो अपन सुनवाऊ ते जो देवी गीत। कैसे के भैया और अब चल रही है गुप्त नवरात्रि, तो सुनते हुकुम सिंह से जो देवी गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हाँ भैया, और देखो ब्राह्म के पास स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। भैया और अब अपन चर्चा करेंगे कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। तो भैया हरो, बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ते ऊर्जा उपयोग के कारण कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन तेजी से कम हो रहे हैं। तो भैया ई के अधिक उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए भैया समय की ज़रूरत है कि हम स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के साधनों को अपनाएं। भैया और गांव में सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधन बहुत ही उपयोगी होते हैं। और भैया घर की छत पे अपन और देखो सोलर पैनल लगा के बिजली बनाई जा सकते है, इससे बिजली को बिल भी कम होता है और बिजली कटौती की परेशानी भी घटाता है। और हाँ भैया हरो, जिन परिवारन के पास पशु हैं वे गोबर से बायोगैस प्लांट लगा के भोजन बनावे के लिए गैस तैयार कर सकते हैं, इससे लकड़ी की बचत होता है और धुएं से होवे बारी कई तरह की बीमारियां भी कम होता है। और भैया जो बची भई इसलरी खेतों के लिए अच्छी जैविक खाद भी बन जाते हैं। तो भैया हरो, यदि हम ऊर्जा की बचत भी करेंगे तो यह सबसे बड़ो योगदान है। और भैया दिन में प्राकृतिक रोशनी को उपयोग करें और फालतू की बिजली, लाइट, पंखे बंद करके रखें, जब ज़रूरत हो तभी चलाएं। तो ऊर्जा बचावे वाले एलईडी बल्ब ही अपनाएं और सोलर कुकर से सूर्य की किरणों से भोजन भी पकाओ जा सकता है और वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होते हैं। और संग ही संग भैया ऊर्जा की भी बचत होते हैं। फिर भैया बचत देखो कौनों सी काहे ना हो, चाहे वो देखो रुपया पैसा की हो, जल की हो, पेट्रोल डीजल की हो। तो भैया हमें सभी चीज़ों पे को ध्यान रखने हैं और बचत करने हैं। और भैया और ऊर्जा संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी भी होते हैं। तो परंपरागत चूल्हों की जगह उन्नत चूल्हों को उपयोग करें तो ऊर्जा की बचत होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा भैया कुकर में साग भाजी दाल चावल बनावें तो ऊर्जा की बचत होगी। और जहाँ तक हो उजाले में काम निपटाएं तो ऊर्जा की बचत होगी। वैसे भी भैया देखो सरकार भी सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा साधनों को बढ़ावा देवे के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं की जानकारी लेके उनको लाभ उठाएं और अपने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। वैसे भी भैया ऊर्जा हमारे जीवन को आधार है और खेती किसानी, सिंचाई, घर की रोशनी, बच्चों की पढ़ाई और छोटे छोटे उद्योग और दैनिक जीवन के लगभग हर काम में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आज भी हम देखें तो देखो कोयला, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन पे अधिक निर्भर है, लेकिन भैया देखो संसाधन सीमित है और इनके अधिक उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आते हैं। तो भैया और ऊर्जा बचाव भी उतो ही जरूरी है जितनी की नई ऊर्जा बनाओ। दिन में भैया प्राकृतिक रोशनी को उपयोग करें, काहे से कि भैया छोटी छोटी बचत मिलके बड़ी बड़ी ऊर्जा बन जाता है। तो भैया और हम

सभी को संकल्प लेना है कि ऊर्जा की बचत करेंगे, वैकल्पिक ऊर्जा साधनों को अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। यही कदम हमारे गांव, हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बने हैं और हमारा पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ रहे और प्रदूषण नहीं फैले और चौ ओर को वातावरण साफ और स्वस्थ और खुशहाल बने हैं। तो भैया और देखो, चर्चा तो आगे और भी करें हैं, पहले कछु मनोरंजन हो जाए। तो सुनते हैं ममता गोस्वामी से जे बरसाती ढोल।

तक अन्न पहुंचाता है। और इसलिए भैया खेती को केवल एक काम नहीं है बल्कि सम्मान और सेवा को कार्य समझना है। और भैया हरो आज खेती के क्षेत्र में नई नई तकनीकें भी आ रही हैं। यदि किसान भैया उन्नत बीज, संतुलित खाद, समय पर सिंचाई और वैज्ञानिक खेती की विधियां अपनाए तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और भैया वो मौसम की जानकारी लेके खेती करवो, फसल चक्र अपनावो और जैविक खेती की ओर ध्यान देवो, लाभदायक भी होता है। वैसे भी भैया सरकार किसान भैया हरण के लिए अनेक योजना भी चला रही है। जैसे कि किसान भैया इन योजनाओं की जानकारी कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र या अपने ग्राम पंचायत से प्राप्त कराते हैं और उनको लाभ उठाने हैं। और साथ ही फसल बीमा, मृदा परीक्षण और आधुनिक कृषि उपकरणों को उपयोग करें। और भैया हो साथ में पशुपालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन जैसी अतिरिक्त व्यवसाय अपना के अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और घर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। इसे समृद्ध गांव और मजबूत भारत की पहचान है। ऐसे ही भैया देखो अब जितो पानी बरसना चाहिए उतो नहीं बरस रहा है, तो हमारे लाने जल की एक एक बूंद बचाव कितने जरूरी है। तो भैया हो देखो जल ही जीवन है और पानी के बिना तो देखो ना तो खेती हो सकत है और ना पशुओं को पालन और ना ही हमारा दैनिक जो जीवन चल सकता है। लेकिन आज भूजल और स्तर को लगातार नीचे जा रहा है। तो भैया हो पानी की हर बूंद को बचावे की जिम्मेदारी हम ही है। तो खेतों में जितनी भी आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करें और जहाँ तक संभव हो टपक और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ ही अपनाएं और वर्षा जल को संग्रह करें। भैया और देखो खेत, तालाब, मेड़बंदी और सोख्ता गड्ढे ही अपनाएं ताकि बारिश को पानी जमीन में समा सके और भूजल बढ़े। और भैया देखो घर में भी अपन ने पानी को सोच समझकर उपयोग करने हैं। नल को खुलो नहीं छोड़ें, पानी की बर्बादी को रोकें, पेड़ पौधे भी लगाएं, काहे से कि वर्षा को बढ़ावा देने हैं और मिट्टी में नमी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो भैया और देखो अब घड़ी की भी सुई इशारा कर रही है और चलवे की बेरा हो गई है। तो हमारे सभी भैया हरण को कल्पना बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। हाजिर हूं मैं लेकर आपका अपना फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीत मालिका। और आज की गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में मैं हूं आपकी कैप्टन, आपकी साथी, आपकी मित्वा, आपकी अपनी दीप।
1: में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने की सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
2: दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को

0: भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज 1 मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप के 3 देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मोल्डोवा की यात्रा के बाद आज श्रीमती मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंची। दोनों ही देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये अब तक की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके बाद वे रोमानिया जाएंगी, जो 30 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा होगी। इन यूरोपीय देशों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों और समूचे यूरोप के साथ हमारे संबंधों के लिए इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, पूरी आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: एम्बेसडर सज्जनहार, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जो 3 राष्ट्रों की यात्रा है उसके दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया गई और उन्होंने आज मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग भी एड्रेस की, वहां के जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। सो आप हमें बताएं कि इस पूरी विजिट को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान परिदृश्य में इसका महत्व क्या है?
3: मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये दोनों देश आजाद हुए थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद इनको स्वतंत्रता मिली और तब से भारत हमेशा इनके प्रगति के लिए, इनके विकास के लिए इनके साथ काम करता रहा है। परंतु कोई ऐसी उच्च स्तरीय यात्रा दोनों तरफ से कहीं नहीं हुई है। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो रोमानिया तो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, 2007 से वो सदस्यता उसको मिली हुई है, और ये जो दोनों देश है, मोल्दोवा है और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये दोनों जिनको कहा जाता है कैंडिडेट कंट्री, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का जो एक बड़ा गुट है उसमें 27 देश शामिल हैं और बहुत तरीके से ये साथ में मिलकर काम करते हैं, और उसमें कैंडिडेट कंट्रीज ये हैं मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया। मतलब इनकी बातचीत शुरू हो गई है और ये कुछ सालों में ये सदस्यता भी उनको प्राप्त हो जाएगी। और ये सभी को ज्ञात है जो इस साल के शुरू में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है, जिसको जब वहां की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भारत में आई थी तो उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन की करीब 21-22 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर अर्थव्यवस्था है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के लिए तो है ही, क्योंकि रोमानिया तो अब पहले ही ये इसका सदस्य हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, हमने एक जो इतना महत्व यूरोप को नहीं दिया जाता था पहले जितना की दिया जाना चाहिए था, और अब हम देख रहे हैं जो उसको महत्व दिया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या विकास का क्षेत्र हो या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो, सभी के साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं।
2: और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा, उन्होंने अपना जो एड्रेस था, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत हेरिटेज और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का बहुत ही अच्छा संगम है, और उन्होंने भारत को 21st सेंचुरी की सक्सेस स्टोरी बताया। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है और कितना आपको स्कोप दिखाई देता है आपसी सहयोग का, जैसा आप कह रहे थे ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में, जो भी इकोनॉमिक का कोऑपरेशन है उसमें कितना आपको स्कोप दिखाई देता है?
3: जी मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे आपने कहा नॉर्थ मैसेडोनिया की जो राष्ट्रपति जिन्होंने इसके बारे में कहा, तो हमारा तो अब पिछले 10-12 साल से हमारा जो फोकस रहा है सोनू जी, वो ये रहा है जो 3 T's जिसे कहा जाता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। टूरिज्म हो गया मतलब उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हो गए, लोग एक दूसरे के देश में जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी, उनके संबंध और अच्छे होंगे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी और इससे व्यापार को भी सहारा मिलेगा, व्यापार को भी नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलेगी। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो उसे कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और पिछले अगर 5-6 साल में देखा जाए सोनू जी, पूरे विश्व में बहुत आपदाएं आई हैं, बहुत विपदा आई है। अगर आप COVID-19 पेंडेमिक से देखें तो पूरे विश्व में बहुत त्राही त्राही मच गई थी, बहुत असंतुलन हो गया था, असमानता आ गई थी, बहुत आर्थिक तरीके से बहुत देशों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। परंतु फिर भी भारत ने, चाहे वो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, चाहे वेपनाइजेशन सप्लाई चेन का रहा हो, सबके साथ जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आगे अच्छी तरीके से बढ़ती रही। उसके बाद हमने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध आया, हम एनर्जी पर कितना बाहर से ऊर्जा लाने में, तेल गैस लाने में हम कितना डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 85-90% तेल हमारा बाहर से आता है, फिर भी हमने अपनी सारी जो हमारी जरूरतें थी उसे पूरा किया और अपनी आर्थिक व्यवस्था को कहीं चरमराने नहीं दिया। और यह बात अभी भी हुई जब ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए चाहे कितना उथल पुथल रहा हो पूरे विश्व में और भारत के लिए भी ये जो हालात थे कुछ इतने सामान्य, कुछ इतने अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी भारत बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर करता रहा। और भारत ने ये कहा है जो जब हमारा विकास होगा तो हम सभी विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चलेंगे
2: जी।
3: तो इसीलिए उनको ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है जो भारत के साथ अगर वो काम करेंगे, भारत के साथ अगर अपने संबंधों को आगे ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही विन विन सॉल्यूशन होगा जिसमें उन देशों का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है।
2: इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अभी बायलैटरल ट्रेड 133 मिलियन डॉलर्स है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने संबोधन में कहा, और इसको दोगुना करना है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो फोकस एरियाज जो डिस्कस हुए, क्या लगता है आपको कौन से सबसे ज्यादा प्रमुख ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको लगता है कि आपसी जो कोऑपरेशन है और ट्रेड है वो बढ़ सकता है?
3: देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। एक तो मैं समझता हूँ जो फार्मास्यूटिकल्स का एक एरिया है, क्योंकि हर देश को दवाइयां चाहिए। भारत, चाहे मैंने COVID-19 का जिक्र किया तो उसमें हम पूरे विश्व की फार्मेसी तो बने हुए थे, पूरे विश्व की हम वैक्सीन कैपिटल भी बनकर उभरे उस समय। तो इसीलिए अब हमारे यहाँ से चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हमें दवाइयां बहुत मात्रा में जाती हैं, जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना ब्रांड वैल्यू लेकर इन दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कि दवाइयां वो जो आम मर्रा के जो लोग होते हैं उनके पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं। तो भारत ने बहुत ही हाई क्वालिटी रीजनेबली प्राइज्ड जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं और बहुत ही मात्रा में हम बहुत देशों में इसका निर्यात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स तो मैं एक समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। दूसरा एग्रीकल्चर। हालांकि देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया एक पहाड़ी देश है, ज्यादा वहां पर जिसे कहा जाए एरेबल या कल्टिवेटेबल लैंड नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर एक जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं
2: जी।
3: और तीसरा मैं समझता हूँ हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का जो हुआ, आजकल जो चल रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, इसमें भारत नए कदम उठा रहा है, नई ऊंचाइयां पा रहा है। और जो ये देश है जहां पर कि ज्यादा एग्रीकल्चर को नहीं किया जा सकता और टेक्नोलॉजी में ये देश आना चाहते हैं, तो मेरे विचार से उस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भारत योगदान कर पाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां और यहाँ पर मैं इसके आसपास के देशों में सोनू जी गया हूँ, मैं मॉन्टेनेग्रो में गया हूँ, क्रोएशिया में गया हूँ, और वहां का जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से भारत के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है।
2: एक सस्टेनेबिलिटी पर भी काफी बल दिया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत का है या हमारा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, डिजास्टर रेजिस्टेंट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ज्वाइन करने की बात हमारी राष्ट्रपति ने कही और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? आपको लगता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में भी एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल अपनाता नजर आ रहा है?
3: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए दो चीजें मैं इसमें कहूंगा, एक तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और पूरे पर्यावरण की संरक्षण करना, ये तो एक पूरे विश्व के लिए जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर उभरा है
2: जी, जी।
3: जो सभी देशों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमको ये पूरा विश्व रोहर में मिला है
2: जी।
3: ये फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसीलिए इसके बारे में तो मिलकर बात करना, सहयोग करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है
2: जी।
3: दूसरा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में उभरा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो COP21 जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, जब भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, और अब उसमें करीब 100 से ज्यादा देश जुड़ गए हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा जो नॉर्थ मैसेडोनिया या मोल्डोवा या रोमानिया किसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जैसे कि देश आप अफ्रीका में

0: या एशिया में मिलते हैं, परंतु फिर भी ये वाली जो तकनीक है, ये वाली बहुत नई नई तकनीकें बनकर उभर रही हैं, और इसमें भारत ने अपने जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, 2015 के पेरिस अकॉर्ड में,
1: जी
0: हमने अपने समय आने से पहले ही हमने उनको पूरा कर लिया। हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स थे,
1: बिल्कुल
0: जो हमें 2030 तक प्राप्त करने थे,
1: जी
0: उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये ISA हुआ या फिर CDRI,
1: जी जी
0: कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करने में दोनों देशों का बहुत फायदा होगा। और अगर
1: जी
0: नॉर्थ मैसेडोनिया, मल्डोवा इसमें ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
1: जो उन्होंने पीस की बात करी, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी, और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनमें रिफॉर्म्स की बात की, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट पहलू लगता है?
0: जी सोनू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि हमने देखा है, एक तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरे विश्व में योगदान है वो एकदम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं सुनता है, क्योंकि देशों के पास वीटो पावर है। वहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रूस के पास वीटो पावर है, यहाँ पर अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कोई भी नहीं सुनता है। और आजकल हम देख रहे हैं यूनिलैटरलिज्म का जमाना आ गया है, माइट इज राइट का जमाना आ गया है, और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में कोई ध्यान नहीं करता है। तो उसके बारे में बातचीत करना, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इससे, जैसे भारत ने हमेशा कहा है, जब तक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली UN सिक्योरिटी काउंसिल का,
1: जी
0: संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक उसका सुधार नहीं होता, उसको आज की रियलिटी में नहीं लाती, क्योंकि वो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो तभी के जो हालात थे उसी के ऊपर वो निर्धारित है, परंतु आज के हालात बहुत बदल चुके हैं। तो उसको, जिसे कहते हैं मूविंग विद द टाइम्स, उसे करना चाहिए, वो अभी उसने नहीं किया है। और इसी के लिए अगर ये दोनों देश और उसके साथ साथ और भी देश साथ मिलकर आते हैं, तो उससे पूरे दुनिया का इसमें कल्याण होने वाला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, आप हमारे साथ जुड़े, और पूर्वी यूरोपीय यात्रा जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, उसके अहम पहलुओं पर हमें जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा। विषय है आलेख रवि अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा, आलेख रवि अवस्थी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन राजनीतिक टकराव, जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब और समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर ऐतिहासिक फैसले के कारण पूरे दिन चर्चा में रहा। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जहां कई मामलों में सरकार को जवाब देना पड़ा। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं में किसानों के भुगतान और औद्योगिक दुर्घटना जैसे मुद्दे उठे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ पूरा सदन यूसीसी विधेयक पर केंद्रित हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और बार बार स्थगन के बीच आखिरकार सरकार ने बहुमत के आधार पर यूसीसी विधेयक पारित करा लिया। इस तरह विधानसभा का दूसरा दिन राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। सबसे पहले धार जिले की बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना में हो रही देरी का मामला उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि तय समय सीमा के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि कोरोना महामारी सहित कई तकनीक

0: सालों से परियोजना प्रभावित हुई, लेकिन अब कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार ने 2027 तक परियोजना पूरी करने और वर्ष 2028 से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने नर्मदा आधारित परियोजनाओं की भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना को भविष्य का समाधान बताया। इसके बाद संविदा कर्मियों और चाइल्ड केयर लीव का मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नीति लागू है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के आते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग रखी, जबकि सरकार का पक्ष था कि ये जनता से मिले व्यापक सुझावों पर आधारित विधेयक है। यूसीसी पर चर्चा शुरू होते ही सदन का वातावरण गर्म हो गया। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष विधेयक पर चर्चा करने की अपनी मांग करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से कई बार अपनी सीटों पर लौटकर चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। बढ़ते हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 10 मिनट और उसके बाद दो बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक पूरे दिन जारी रही। यूसीसी पर चर्चा के दौरान भाजपा नेताओं ने इसे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि जनता के सुझावों का विधेयक है और करीब 10 लाख लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास थबनानी, संजय पाठक और अन्य सदस्यों ने भी कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 29 का हवाला देते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। बहस के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार का पक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य होगा और एक पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी पर प्रदेश के 93% लोगों ने समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी रही, लेकिन उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करा लिया। अध्यक्ष ने यूसीसी विधेयक को पारित घोषित किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाला राज्य बन गया। यूसीसी पर निर्णय के बाद सदन में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। कार्यसूची में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उपकर संशोधन, श्रम शक्ति संहिता, धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और अन्य संशोधन विधेयक शामिल रहे। विधानसभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। इस तरह लगातार हंगामे, नारेबाजी और स्थगन के बावजूद सदन ने अंततः अपना विधायी कार्य पूरा किया। वहीं यूसीसी विधेयक पारित होने के साथ विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही ऐतिहासिक बन गई। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।
1: आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, आलेख रवि अवस्थी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का ये प्यारा सा गीत। एस एच बिहारी के बोल थे और संगीत ओपी नैयर का। आइए सुनते हैं अगला गीत।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, संगीत सलील चौधरी का था और फिल्म का नाम था मधुमति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे श्रोताओं के लिए सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय या फिर सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियोस, ऑडियो या फिर संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज की वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने या संबंधित सदस्य को ऐसा करने के लिए रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के बीच विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों या फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस या फिर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
5: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच UCC विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
6: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
7: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
8: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम

0: के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगें मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, He said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हिराफ करने का इल्ज़ाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह

0: और मरकजी दाखला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नज़र दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नज़र दोनों ऐवानों की कार्रवाई तीन मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलों पर नारेबाजी कर रही थीं। रखनांदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतल्लिका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के आते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही हैं। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़ियाफ़त और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्दाना डॉवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थीं।
4: आर्थिक

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू से कव्वाली समात फरमा रहे थे और कलाम था फरीद टोंकी का। सामीन, एक जगह इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक मुरीद ने अर्ज किया, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की रगबत के बगैर भी मेरी जबान से अल्लाह ताला का जिक्र जारी रहता है। उन्होंने फरमाया, ये भी तो शुक्र का मकाम है कि तुम्हारे एक उज्व यानी जबान को अल्लाह ताला ने जिक्र की तौफीक बख्शी है, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह ताला के जिक्र में नहीं लगता उसे बाज़ औकात शैतान वसवसा डालता है कि जब तेरा दिल अल्लाह ताला के जिक्र में नहीं लगता तो खामोश हो जा कि ऐसा जिक्र करना बेअदबी है। इस शैतानी वसवसे से बचना चाहिए। अल्लाह के नाम का विर्द और उसकी नेमतों का ध्यान इंसान के दिल से मायूसी और खौफ को मिटाता है। इंसान के दिल में ये यकीन पैदा होता है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, जिससे नाउम्मीदी खत्म होती है, क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल का ये मामूल था कि मुश्किलात और परेशानियों के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर नमाज और जिक्र इलाही की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। दोस्तों, कसरत से इस्तग़फार करने से रिस्क की तंगी दूर होती है, मुसीबतें टलती हैं और वहां से मदद आती है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा मुसीबत में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ में। गुलजार की बोल है और संगीत ए आर रहमान का।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत से सजा गीत। बोल हैं भरत व्यास के, फिल्म का नाम है नवरंग और खूबसूरत आवाजें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं शक्ति फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं तकदीर फिल्म का गीत, उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोथी की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए पंडित यशवंत बुआ जोशी का ख्याल गायन, राग है रामकली, तबले पर संगत की है स्माइल दद्दू खान ने।

अभी आप सुन रहे थे यशवंत बुआ जोशी का ख्याल गान, राग था रामकली। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी